कहते हैं कि जैसी हमारी सुबह होती है ना, वैसा ही हमारा पूरा दिन गुजरता है। अगर आज सुबह आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके तो जरूर कीजिएगा। अपने घर की बालकनी या छत पर बेजुबान पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी रख दीजिए। जब आप काम पर निकले तो रास्ते में मिलने वाले हर उस इंसान को मुस्कुरा कर देखें जो आपकी सुबह को बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वो आपके घर अखबार देने वाला हो या दूध वाला। और हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, आज का दिन मेरा है और मैं अपनी पूरी मेहनत से इसे बेहतरीन बनाऊंगा। क्योंकि जिंदगी क्या है किसी को खबर नहीं।

प्यार तुझे देगा वो मालिक, वो प्यारे जबा मैं तेरी मीठी

तो जनाब, आज की भोर आपके लिए क्या संदेश लाई है? जी हाँ, ये संदेश लाई है कि किरणें चाहे सूरज की हों या आशा की, जब भी निकलती हैं, वो अंधकार को मिटा ही देती हैं। तो अपनी उम्मीदों को जगाए रखिए, रोशन करते रहिए। जी हाँ, और ऊर्जावान बने रहिए।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 तो मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों में। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। ये समय होता है हमारे केंद्र से भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। सबसे पहले मातृभूमि को नमन करते हैं इस मातृ वंदना से।

मातृभूमि को नमन करने के बाद आइए अब आनंद लेते हैं भजनों का। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर नरुला की आवाज में।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है चिंतन का। आज चिंतन का विषय है जागृत और निद्रा। चिंतक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद।
1: कई बार सामान्य समझ या कॉमन सेंस जिस परिणाम को हमें दिखाता है वो सही नहीं होता। सामान्य समझ ये है कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं। ये निष्कर्ष सही नहीं है। वास्तविक बात यह है कि अंधेरा और प्रकाश सदा साथ साथ

0: और मिले हुए हैं। एक उदाहरण से समझें। एक अंधेरे कमरे में दिया जलाइए। आप कहेंगे यहां उजाला हो गया और अंधेरा गायब हो गया। अब उसी कमरे में 100 वाट का एक बल्ब भी जला दीजिए। अब पहले से कहीं ज्यादा उजाला हो गया। तो अगर पहले वाले दिए से पूरा उजाला हो गया होता और पूरा अंधेरा दूर हो गया होता, तो फिर बाद में चाहे जितना भी प्रकाश करते, उजाले में कोई वृद्धि न हो पाती। वस्तु स्थिति यह है कि पहले जब दिया जलाया तो कमरे में जो प्रकाश हुआ उसमें काफी मात्रा में अंधकार मिला हुआ था, और जब बल्ब जलाया तो यह अंधकार काफी कम हो गया और इसीलिए प्रकाश पहले से ज्यादा मालूम पड़ा। धूप में जब हम खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि वहां अंधेरा बिल्कुल नहीं है, पर सूर्य के प्रखरतम प्रकाश में भी अंधेरा कुछ न कुछ जरूर मिला हुआ है, क्योंकि अगर वहां एटम विस्फोट का प्रकाश हो जाए तो वो सूर्य के प्रकाश को भी फीका कर देगा। अर्थात सूर्य के प्रकाश में भी कुछ अंधेरा मिला हुआ है। सच तो ये है कि कोई प्रकाश ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें अंधेरा न मिला हो। इसी प्रकार कोई अंधेरा भी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें अल्प मात्रा में प्रकाश न मिला हो। जिस अंधेरे में हम देख नहीं सकते उसमें उल्लू और बिल्ली प्रकाश महसूस कर पाते हैं। ठीक यही अवस्था जागृति और सुषुप्ति की है। इनके मिश्रण की अवस्था है स्वप्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप जागे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से जागे हुए हैं। उस जागने में भी थोड़ी सी निद्रा मिली हुई है। जागने की भी कई श्रेणियां हैं। सोकर जब आप उठे और आंखें खोली तो आप जग तो जरूर गए, पर खुमारी के रूप में थोड़ी सी नींद बाकी है। यानी यहां जागना और सोना मिले हुए हैं। फिर जब आप नहा धोकर दफ्तर गए तो भी ये न समझिएगा कि आप पूरे जग गए। दफ्तर पहुंचने पर आपको ये याद नहीं रहता कि जिस रिक्शे पर आप बैठ के आए उसका रंग कैसा था। आपको ये भी याद नहीं कि दफ्तर की सीढ़ियों पर आपके पैर कैसे पड़े, आपके हाथ कैसे हिले। इन सब की याद न होने का अर्थ यही है कि आपका दफ्तर आते समय जागे हुए होना पूरा नहीं है, उसमें कुछ नींद अवश्य मिली हुई है। ठीक प्रकाश और अंधकार के मिश्रण की भांति हम जागते हुए भी सोए हुए हैं, पूरे होश में नहीं है। इसीलिए संतों और महापुरुषों ने हमसे कहा है कि उठो जागो। अगर हम जगते में भी पूरा जागे रहते तो महापुरुषों को हमें जगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। किंतु अभ्यास से, सत्संग से और ध्यान के प्रयोगों से जागृत और सुषुप्ति के इस जोड़ में से सुषुप्ति का अंश बहुत कम किया जा सकता है और शायद शून्य भी किया जा सकता है। तब आप पूर्ण जागृत होंगे, बुद्ध होंगे। बुद्ध यानी जागा हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज चिंतन का विषय था जागृत और निद्रा। चिंतक थे श्री राजेंद्र प्रसाद। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है श्री रामचरित मानस के संगीतमय प्रसारण का। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है रविंद्र साठे का। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी

वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं, वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर थे रविंद्र साठे के। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है कृषि सामग्री का। आज जानकारी का विषय है टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। जानकारी दे रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है। यहाँ तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इन सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है, इसके अलावा

0: एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियां या कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जांच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किन की कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें, जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीन में कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी दो तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम नर्सरी खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में है पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास की अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम बेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीजें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना आपके फल ज्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं या स्प्रे भी किया जा सकता है। इनका जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामिक। आज जानकारी का विषय था टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। जानकारी दे रहे थे पुष्पेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है कार्यक्रम विवरण जानने का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 समय रहेगा लघु वार्ता का। आज हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रीय एकता पर। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 7:45 पर आप सुनेंगे सूचना पर एक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनेंगे

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 9:00 बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा का प्रसारण किया जाएगा। 9:20 पर आप पुनः सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 10:00। 10:05 समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

महिला कार्यक्रम के तहत दिन में 1 बजे आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। दिन में 1:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। दिन में 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। दिन में 2:30 पर भी आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा। रात 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। रात 9 बजे भी आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी इन सभी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबंधन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला

0: समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशनसमारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना

0: में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकुवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है लघु वार्ता का। लघु वार्ता में आज हम आपसे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता पर। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों या असमानताओं को कम करना और आपसी एकजुटता को मजबूत करना। राष्ट्रीय एकता एक देश के लोगों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी देश को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय एकीकरण किसी देश को एकीकृत और एकजुट रहने और विकास के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। राष्ट्रीय एकता समाज के हर वर्ग को उनकी जाति, धर्म, लिंग या भौगोलिक स्थिति से परे एकजुट करके देश को एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एकीकरण देश की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के प्रति वफादारी और भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। जब व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, तभी सही मायने में वो सच्चा देशभक्त कहलाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान देशभक्त हुए, उन्होंने सदैव परोपकार, परहित और देश के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए कार्य किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई और देश के नाम समर्पित किया। स्वयं कष्ट उठाकर अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर कंटक पथ पर चलना स्वीकार किया और हमेशा यही प्रयास किया कि देश के ऊपर, देश के नागरिकों पर कभी कोई आंच ना आए। सर्वत्र खुशहाली हो, सर्वत्र शांति हो, देश तरक्की और विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे। श्रोताओं, हमारे महापुरुषों का जीवन, हमारे देशभक्तों का जीवन हमें हमेशा सत्कर्म करने और देशभक्ति का संदेश देता है। समाज में व्याप्त बुराइयों, अत्याचार, अनैतिकता, शोषण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार एक परिवार सभी परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलता है, उसी प्रकार एक देश भी वहां के सभी नागरिकों के सहयोग से चलता है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, विविधताओं का देश है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सदैव सम्मान करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचे या हानि पहुंचे। देश में आने वाले किसी भी संकट और चुनौती का साथ मिलकर सामना करना चाहिए। देश हमारा है और हम देशवासी हैं, इस भावना को प्रबल बनाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं है, सबसे ऊपर है देश का गौरव। कहने का तात्पर्य यही है कि देश देशवासियों का है और प्रत्येक नागरिक देश की ताकत है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार देश का एक एक नागरिक देश रूपी बगिया को महकाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की बगिया हमेशा महकती रहे, तो हमें एक बगीचे की भांति रहना होगा, तभी हम कहेंगे कि हम सब एक हैं। अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, हम आपसे बात कर रहे थे राष्ट्रीय एकता पर। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:10

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम और प्रदेश में 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। कल ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और वे 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं वहां के भारतीय समुदाय तक लेके पहुंचे हैं।
1: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर में कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसमें अनेक गतिविधियां इस दिशा में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद करेगी।
2: देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किए जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा।
0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ युवा विकसित भारत एट 2047 के निर्माण में सहभागी बनते हुए प्रदेश की समृद्धि के भी सूत्रधार बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश यूथ कॉन्क्लेव 2026 में इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद किया। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देशभर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में ग्राम बुड़ानिया में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा, जो विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। हैदराबाद में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय आईटी उद्योग से पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवा मॉडल से आगे बढ़कर एआई मॉडल अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक एआई पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है ताकि भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सके। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडला जिले में जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान का शुभारंभ किया गया। परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर नीमच में जागरूकता रैली निकाली गई और बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। इटली के लोनाटो शहर में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अकादमी की दूसरी खिलाड़ी मनीषा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान हासिल किया गया। हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती अकादमी की पूर्व खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापत ने महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, चंबल शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। रामपुर में 63 मिलीमीटर और अटेर में 54 तथा रीवा शहर में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ कल किया गया, जिसमें मंत्री संपत्ति अविके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल रहे। खंडवा जिले में और इसके हरसूद तथा पुनासा तहसील न्यायालयों में आगामी 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। आगरमालवा जिले के ग्राम निपनिया बैजनाथ आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रोटला में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल 125 छात्र छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। और डिंडौरी जिले के प्रत्येक विकासखंड की 7-7 शालाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का सोशल ऑडिट आगामी 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम और प्रदेश में 14 जुलाई

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत इंदिवर का है, संगीत रोशन का। फिल्म है मल्हार।

कामना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: नहीं, नहीं।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: जाओ ना, क्यों सताते हो।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म से लिया गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत ओपी नैयर का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। गीत राजा मेहंदी अली खान का है, संगीत ओपी नैयर का।

एक मुसाफिर एक हसीना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से लिया गीत, जिसे आवाजें दी थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत राजा मेहंदी अली खान का था, संगीत ओपी नैयर का। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में महबूब की मेहंदी फिल्म से लिया गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

महबूब की मेहंदी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से लिया गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

श्रोताओं नमस्कार, सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सकारात्मक बात से। श्रोताओं जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। खुशी गम परेशानी ये तो जिंदगी का हिस्सा है, इनके बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं। यदि दुख है तो क्या सारी जिंदगी उस दुख के सहारे बिताना है? नहीं। कभी असफलता मिलती है तो क्या सदा निराश बने रहना है? नहीं। जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, हमें जिंदगी के साथ चलना है। और कहते हैं ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। सही जिंदगी वही है जो दुख में भी हंसी और

खुशी के साथ व्यतीत हो। एक और कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी कभी हम देखते हैं कि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जिंदगी की जंग जीत लेते हैं और ये ताकत उन्हें मिलती है प्रसन्न रहने से। जो भी परेशानी है उसका हल निकालना चाहिए, ना कि हमेशा परेशान रहना चाहिए। मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, इसलिए हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कीजिए। ये तो हुई एक सकारात्मक बात, और अब बात करते हैं आज के दिन यानी 12 जुलाई के दिन मनाए जाने वाले दिवसों की। श्रोताओं, आज मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाए जाते हैं। मलाला दिवस मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के अधिकारों की वकालत करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के सम्मान में इस दिवस को खास तौर से मनाया जाता है। और अब बात करते हैं विश्व पेपर बैग दिवस की। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक से बचने के संदेश के साथ हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण अनुकूल कागज के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। हमें भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्लास्टिक की जगह कागज के थैलों या कपड़े के थैलों का उपयोग करना चाहिए। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज यानी 12 जुलाई के दिन मनाए जाने वाले दिवसों की। और अब आपको देते हैं कुछ जानकारियां। सामाजिक न्याय विभाग की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र विवाहित दंपतियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उप संचालक शशि किरण इक्का ने बताया कि दंपति में एक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए तथा दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। एक और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। जिले के सभी ऋणी और अऋणी किसानों से आवेदन करने की अपील की गई है। योजना प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम के नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा देती है। केसीसी ऋणधारक किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। डिफॉल्टर या अऋणी किसान निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। बीमा के लिए एग्री स्टैक किसान आईडी, पहचान पत्र, भू अधिकार पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। श्रोताओं, कुछ और जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और अब आपको देते हैं कुछ और जानकारियाँ। पर्यटन विभाग स्कूली विद्यार्थियों में पर्यटन, इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक धरोहरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 करा रहा है। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, CBSE स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। स्कूल स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई 2026 की शाम 5:30 तक होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। आयोजन कलेक्टर, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के अध्यक्ष अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में किया जाएगा। एक और जानकारी हम आपको देते हैं। पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महाविद्यालय के चारों विभागों के 20 विद्यार्थियों का चयन देश की विभिन्न राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। भारत विकास परिषद के 64वें स्थापना दिवस पर परिषद के समर्पित कार्यकर्ताओं को नमन किया गया। उनके त्याग, समर्पण, परिश्रम, सेवा भाव को याद किया गया। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, परिषद परिवार को शुभकामनाएं दी गईं। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण की यात्रा आगे बढ़ाने की मंगल कामना की गई। राष्ट्र सेवा के संकल्प को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही गई। स्थापना दिवस पर फतेहपुर स्थित सेवा भारती सहरिया वनवासी छात्रावास में सेवा, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम हुए। परिषद अध्यक्ष गणेश धाकर ने परिषद के ध्येय राष्ट्र निर्माण पर प्रकाश डाला। छात्रावास के बालकों को भोजन वितरित किया गया, उनसे आत्मीय संवाद किया गया। श्रोताओं, इन तमाम सारी जानकारियों के साथ आप सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वॉटर ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने

0: स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण

0: अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन

0: से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7 हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा और श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर

0: इकाइयों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मानसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said,

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सूरज फिल्म के गीत से, जिसे आवाज दी है शारदा ने। गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। आइए सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत फिल्म सूरज से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डेक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में रफू चक्कर फिल्म से लिया गीत। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। प्यासा सावन फिल्म से लिया गीत, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, रिश्का और रॉबिन।

आइए अब सुनते हैं रोटी फिल्म से लिया गीत, जिसे आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत आनंद पक्षी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर रोटी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है राजा और रंग। इस गीत को सुनना चाहते हैं अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दिशा रूही और लवी श्रीवास्तव।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। फिल्म है ब्रह्मचारी और इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी ने।

ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है नन्हे बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बाल सभा का। आइए

बच्चों जय हिंद। नन्हे दोस्तों, बाल सभा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दीदी। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 12 जुलाई को मनाया जाने वाले खास दिन की। बच्चों, आज 12 जुलाई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। बच्चों, पेपर बैग का मतलब होता है पेपर या कागज से बने थैले जिनमें हम बाजार से सामान लाते हैं। बच्चों, कागज के थैलों के आविष्कार और विकास को सम्मान देने के लिए यह दिन चुना गया है। बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि प्लास्टिक से बने बैग पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, जबकि कागज का बैग बहुत कम समय में प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है। बच्चों, पेपर बैग पूरी तरह से नवीनकरणीय संसाधनों से बनते हैं जिन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। बच्चों, इस दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और पेपर बैग बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम खरीदारी के समय नो प्लास्टिक की शपथ लें और पेपर बैग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। बच्चों, अब बात करते हैं पढ़ाई की। बच्चों, आपके स्कूल शुरू हो गए हैं और स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। बच्चों, पढ़ाई का जीवन में बहुत महत्व है। पढ़ना लिखना सभी को आना चाहिए। पढ़ाई से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बच्चों, आप नियमित रूप से स्कूल जाइए और खूब मन लगाकर पढ़िए। बच्चों पढ़ने से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है। और एक और बात हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि पढ़ने में कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जो नियमित होमवर्क मिलता है उसे आप समय पर पूरा करिए। और जो चीज़, जो बात आपको समझ में नहीं आती उसे अगले दिन जाकर अपने क्लास टीचर से या अपने विषय शिक्षक से पूछिए। बच्चों, नियमित होमवर्क करने से आपके लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस बढ़ती है, जिससे परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप अपना होमवर्क मन लगाकर करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सब याद हो जाएगा, इसलिए आप अपना होमवर्क समय पर करिए। बच्चों, ये तो बात हुई समय पर होमवर्क करने की, और अब हम आपसे एक और चर्चा करना चाहेंगे। बच्चों, जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं और हमेशा सम्मान को प्राप्त करते हैं। बच्चों, यदि आप झूठ का सहारा लेते हो तो एक झूठ को छिपाने के लिए आपको अनेक झूठ बोलने पड़ेंगे और अंत में आपका झूठ सबके सामने आ ही जाएगा। बच्चों, सोचो यदि आप ऐसा करोगे तो आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और कोई भी आपकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। बच्चों, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवन में हमेशा सच और सत्कर्म को अपनाया है और देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। बच्चों, सच बोलने वाले इंसान को कभी भी भय नहीं लगता, जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत और डरा हुआ रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, ये तो हुई आपसे एक और चर्चा जिसमें हमने आपसे बात की कि जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, बातें अभी बहुत सारी हैं और अब आपसे करते हैं एक और ज़रूरी बात। बच्चों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बीमार हैं, हमारे सिर में दर्द है या हमारे पैर में दर्द है या हमारे पेट में दर्द है,
तो फिर हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है। बच्चों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? बच्चों सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं हमारे पेट से, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। और जब हम खूब तीखा चटपटा बाजार का खाना खाते हैं या अधिक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम का सेवन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नूडल्स बर्गर पिज़्ज़ा या मैदे की बनी चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा बिस्किट और चॉकलेट खाते हैं तो हमारा पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बच्चों हम इन चीज़ों को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते और जब खाने पीने की चीज़ें हम हजम नहीं कर पाते तो हम हो जाते हैं बीमार। बच्चों कई बार आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपको पेट में बेचैनी महसूस होती है और कई बार आपको उल्टियां भी हो जाती हैं। ये सब तभी होता है जब हम खाना आसानी से हजम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों आपको अपने खान पान पर स्वयं ध्यान देना चाहिए। हमेशा उतना ही खाना खाना चाहिए जो आसानी से हजम हो जाए।

हमेशा हल्का सुपाच्य और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। बच्चों खाने में ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे शरीर को ताकत मिले, ना कि शरीर बीमार और कमज़ोर हो जाए। बच्चों जो अंकुरित अनाज होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। आपको अंकुरित चने, अंकुरित दालें ज़रूर खाना चाहिए। बच्चों खाने के साथ टमाटर, प्याज, गाजर, नींबू, मूली, खीरा, ये सब चीज़ें भी सलाद बनाकर खाना चाहिए। बच्चों खाने में सबसे अच्छी चीज़ होती है दाल रोटी, हरी सब्जियाँ। बच्चों आपको खूब अधिक हरी सब्जियाँ खानी चाहिए जिससे आप तंदुरुस्त बन सकें, हेल्दी बन सकें और ताकतवर बन सकें। बच्चों हम आपको एक बात बताएं कि सभी रोग उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है। लेकिन जो स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी पावर अधिक होती है, उन पर किसी भी रोग का कोई असर नहीं होता है। और आप जानते हो ये इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर आती है पौष्टिक खाना खाने से, ऐसा खाना खाने से जिनमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। बच्चों आपको हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। बच्चों इस समय बाज़ार में केले, सेब, पपीते, आम, अनार, बहुत सारे फल आ रहे हैं। आप इन्हें खूब खाइए, इनसे आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे और हमेशा रोग मुक्त भी रहेंगे। बच्चों जब आप खुश रहोगे, हंसोगे, खिलखिलाओगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें अभी हमने आपसे की और अब

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। बच्चों, ये गीत आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें बात आई है चंदा मामा की, और चंदा मामा तो आप सभी बच्चों के प्यारे होते हैं, ये बात हमको अच्छी तरह से मालूम है। बच्चों, आप चंदा मामा की कविताएं सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं और आपको ये सब सुनने और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों, सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी, सभी चीज़ें हमारे जीवन का आधार हैं। हमारे जीवित रहने के लिए इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। बच्चों, कल्पना करो, यदि सूरज निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा? यदि हवा नहीं चले तो क्या होगा? यदि मिट्टी ना हो तो क्या होगा? बच्चों, हाँ, आपको समझ आ रहा होगा कि अगर ऐसा होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बच्चों, आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे आपकी मम्मी परेशान हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे हो। बच्चों, हम देख रहे हैं कि इस समय बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। बच्चों, सबसे ज़्यादा समस्या आती है ऐसे में पानी की। हो सकता है बच्चों, आपके घर भी पानी की बोतल आती हो, क्योंकि अब नल में एकदम साफ पानी नहीं आता है। बच्चों, ऐसा पानी नल में नहीं आता जिसे हम सीधे गिलास में डालकर पी सकें। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आपको फिल्टर का पानी पीने के लिए देती हैं और आपसे ये भी कहती हैं कि हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि बच्चों, यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो तमाम सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, पानी हमेशा ढककर रखना चाहिए, पानी निकालते समय डंडी वाले लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा हाथ अच्छी तरह से धोकर ही पानी लेना चाहिए। बच्चों, इसी तरह से खाने की कोई भी चीज़ छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। बच्चों, एक बात हम आपसे और कहना चाहेंगे कि आपको पानी की बचत भी करना है। पानी को व्यर्थ

नहीं फेंकना है, जितनी ज़रूरत हो उतने ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और नल की टोटी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप सभी के और प्यारे बन जाएंगे। इसी तरह से बच्चों, आप खाने पीने में सावधानी रखोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बच्चों, हम आपसे एक और बात करना चाहेंगे। बच्चों, समय समय पर आपने देखा होगा कि स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा, रेडियो पर भी सुना होगा और अपने घर के आसपास स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों, आप कहीं पर जब भी गंदगी का ढेर देखते हो, चारों तरफ पड़ा हुआ कचरा देखते हो, तो आपका मन कितना ख़राब हो जाता है ना बच्चों? आप और हम सभी लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि चारों तरफ हमें जो गंदगी दिखाई देती है उसे कौन फैलाता है? बच्चों, आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि कचरा और गंदगी जो है ना, उसे सिर्फ मनुष्य फैलाते हैं। यदि हम सब इस बात पर विचार करें कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की भी सफाई रखनी है, तो सारा देश एकदम साफ सुथरा और चमकदार बन जाएगा। तो बच्चों, आप साफ सफाई का ध्यान रखिए और पानी की बचत कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए। बच्चों, बहुत सारी बातें आज हमने आपसे इस बाल सभा कार्यक्रम में की और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई हैं और अब कार्यक्रम का समय भी हो रहा है समाप्त, तो अपनी दीदी को दीजिए अनुमति।

अभी नन्हे नन्हे बाल श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म है कृष्णा कॉटेज। गीत नीलेश मिश्रा का है, संगीत अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार।

कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे आवाज दी थी श्रेया घोषाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लवरेज फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत अनजान का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, रिश्का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, बबला और साथियों की आवाज में चांदनी फिल्म से लिया गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरि का। इस गीत को सुनना चाहते हैं गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबिता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज में छुपा रुस्तम फिल्म से लिया गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुला।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में मुझसे शादी करोगी फिल्म से लिया गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं धनवान फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

धनवान फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

0: वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। डिंडौरी जिले में इस बार मानसून की बारिश देर से शुरू हुई और अभी तक अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, जिससे फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। हालांकि कृषि विभाग ने पहले ही किसानों को कम बारिश की संभावना के चलते फसलों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह जारी की थी। पिछले सप्ताह हुई बारिश में कई नदी नालों में बाढ़ की स्थिति भी बनी। जल भराव एवं आपदा जैसी स्थिति की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने नगर के नर्मदा डैम घाट, शंकर घाट तथा इमलीकुटी नाले का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नालों की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गंदे पानी को नर्मदा नदी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नगर परिषद डिंडौरी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली पवित्र एवं स्वच्छ निर्मल नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया एवं नगर परिषद आयुक्त की पहल पर मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से संचालित सीवर योजना के अंतर्गत शहर के 8 प्रमुख नालों का दूषित जल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उसका उपचार कर पुनः उपयोग किया जा रहा है। सीवर योजना के प्रारंभ होने से पहले नगर परिषद क्षेत्र के 8 प्रमुख नालों से प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर दूषित पानी सीधे नर्मदा नदी में मिलकर नदी को प्रदूषित कर रहा था। कृषि विभाग द्वारा एफआरए के अंतर्गत वनाधिकार पट्टा प्राप्त कृषकों से अपील की गई है कि वे खरीफ मौसम में उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई टोकन प्रणाली का उपयोग करें। ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से कृषक निर्धारित तिथि एवं समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिले में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उर्वरक भंडारण और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। राज्य नीति आयोग की प्रभारी एवं शहडोल संभाग की कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने आकांक्षी विकास खंड करंजिया में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र डिंडौरी द्वारा डीपीआई आईटी एवं एमपी स्टार्टअप सेंटर के सहयोग से 8 जुलाई को जिला स्तरीय तेजस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले के युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं एवं उद्यमियों को स्टार्टअप उद्यमिता, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला में एमपी स्टार्टअप सेंटर के विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप इंडिया, उद्यम पंजीयन, नवाचार, इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की विस्तृत जानकारी दी गई। डिंडौरी जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए संचालित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए जिले की टीम को बीते 28 जून को आरसीपीवी नरोना प्रशासन तथा प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में बीते दिनों जल संचय एवं जनभागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडौरी ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के तहत जिले की

364 ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी से हुए जल संरक्षण के कार्य संपन्न हुए, जिससे कुल 31,21,200 घन मीटर जल संग्रहण क्षमता का विकास हुआ। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, जिसमें डिंडौरी जिले के विकासखंड शहपुरा स्थित शासकीय आश्रमशाला अंग्रेजी माध्यम को स्थान मिला है। ये जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विद्यालय ने स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और हरित परिसर निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। जिला परियोजना समन्वयक दिवाकर तिवारी ने बताया कि चयनित विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जुलाई माह में जिले में डेंगू निरोधक माह चल रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के निर्देशन में डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर बीते दिनों रवाना किया गया। ये डेंगू रथ जिले के सभी विकास खंडों, शहरी क्षेत्रों, पंचायतों एवं हाट बाजारों में भ्रमण कर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव संबंधी जानकारी दे रहा है। जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे डिंडोरी जिले की चिट्ठी। आलेख था लक्ष्मी नारायण अवधिया का, वाचन स्वर थे अभिषेक कटियार के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित चिरंजी लाल। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस रचना से।

0: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डेक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं ये रचना

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं पंडित चिरंजी लाल। आइए अब सुनते हैं ये रचना।

इस रचना के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे पंडित चिरंजी लाल। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 102.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए हेमलता की आवाज में। फिल्म है आप तो ऐसे ना थे।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में काला पत्थर फिल्म से लिया ये गीत।

0: पी बाला सुब्रमण्यम ने। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म आशिकी 2 से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत और संगीत है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की

163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

लीजिए, आप सुनिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत, जिसे लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है।

इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लाहार से आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर कल से मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। एनीमिया, बाल और किशोर स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित पहले वेबिनार में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। गुमशुदा व्यक्तियों की शीघ्र खोज एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक गुम इंसान के प्रकरण में अनिवार्य रूप से FIR पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत है कर्ज फिल्म का, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से, और मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

के गीत आप सुन रहे हैं जुदाई फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। गीत की फरमाइश की है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या ने।

शिवाजी चौक राजस्थान छत राजस्थान से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव, देवास से रानू गुप्ता और सागर से नंदिनी तिवारी। आप सब ने पसंद किया है हरजाई फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, निदा फाजली का गीत और संगीत राहुल देव वर्मन का।

अगला गीत कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज, मसरूर सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया सी ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य श्रीमाली, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा अपने पराए फिल्म से, आवाज यशुदास और साथियों की, योगेश का गीत और बप्पी लहरी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:25 होने को है, सुनते हैं ये संदेश।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
0: सच?
5: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
0: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
5: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
0: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
5: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दान।
8: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 आकाशवाणी भोपाल पर।
9: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
10: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
11: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
9: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
10: आकाशवाणी है ना,
12: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
10: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
9: शाम सुहानी हो,
10: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
9: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
10: सफर में
9: आपके साथ
10: आकाशवाणी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक।
3: वो मिसेस क्या है कि मेहंदी लगाती है, तो बोली कि आप भी संडे के संडे मेहंदी लगा लिया करो। अच्छा, तो उससे बाल नहीं गिरते क्या? नहीं, कुछ कम तो हुए।

0: नकली बाल लगाने की भी अब व्यवस्थाएं खूब बढ़ती जा रही हैं। आए दिन आप देखो लड़का जरूर अच्छा खाते पीते उसका है, जब ही तो उसके इतने बाल हैं। शादी हुई, पगड़ी लगाई, पगड़ी में भी वो अपना संभाले लड़का, कमल अपने कल में दबाएगी जिसमें बिग न खिसक जाए, पगड़ी उतरती जाती रही। दूसरी विदा के टाइम पे अब ये बात कैसे पता चली कि जब एक जिसके बाल नहीं थे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आपके बाल नहीं थे, आपकी शादी कैसे हुई? बोले नकली बिग बाल लगा के गया, लड़की देखने गया। अच्छा फिर क्या हुआ? लड़की पसंद आ गई। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद कहले मैं दूसरी विदा कराने गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या जबलपुर गया भैया दूसरी विदा में, तो अब लोग बोले कि जिया जी ग्वारी घाट चलो नर्मदा किनारे नहाने के लिए। तो मैंने कहा भैया मैं नर्मदा जी चलूंगा जरूर, किंतु नहाऊंगा नहीं। कनेक्टिव आंसर क्यों बोला आपने? नहाते तो यार क्या है कि अब बाल उतारना पड़ते तो समझ में आ जाते कि जीजा टकला है। इस चक्कर में अपन ने कहा कि मैं नहाऊंगा नहीं, सिर्फ दूर से प्रणाम करूं। साले लोग कहने चलो जीजा नहाना नहीं, नर्मदे हर करके चले आना। मैं गया भैया, अब जब मैं गया तो बढ़िया साले लोग ने बोला अच्छा जिया जी नहाना नहीं किंतु तेल लगा लो मालिश बढ़िया नर्मदा किनारे माँ के दर्शन, और कहने जबरन कहने यार डुबकी लगवा दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब वो जीजा थोड़ी देर बाद लगे चिल्लाने जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो जीजा बहगो। कहने हाँ अब हमारे बाल बहे जाए, अभी लड़का हमारे साले पीछे पीछे तैरत जाए, जीजा बहगो जीजा बहगो। फिर कहा हमने कही हम तुम्हारे जीजा, तो कहले हमें इतनो मारो यार, कहले टकला जीजा बन रहा। फिर अरे फिर क्या, अब 20 दिन हो गया भाई साहब अभी तक परेशान है, मेरी बीबी भी मानने तैयार नहीं है। वो भी कहती नहीं वो उनके तो बहुत अच्छे बाल थे, आप तो टकला हो। तो कहले भाई साहब ऐसा है बिग लगाने से फायदा भी है तो नुकसान भी है। भाई साहब ये तो आपने अच्छा बता दिए, मेरे भी बाल अब कम हो रहे हैं तो मैं कभी बिग नहीं लगाऊं। कहने बिल्कुल मत लगाओ, जो ईश्वर ने जैसा दिया वैसे ही रहो, उसी रूप को प्राप्त करते रहो, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो। अच्छा अच्छा ये बहुत अच्छा आपने बता दिया। तो ये बात हुई जिनके बाल नहीं है या जिनके बाल झड़ने वाले हैं उनके लिए मैंने आपके बीच में हास्य व्यंग प्रस्तुत किया। लीजिए हंसना मना है इस आकाशवाणी के कार्यक्रम में, आपको एक और व्यंग की ओर ले चल रहा हूं कि वही चीज आप लोग सुनते हैं, वही चीज हम सुनते हैं, वही चीज आप देखते हैं, वही चीज एक व्यंग्यकार हास्य कलाकार देखता है, तो उसके नजरिए को हम प्रस्तुत करते हैं और फिर बात होती है कि हंसना मना है। तो कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 पर रेलवे स्टेशन पर, वो आप कैसा सुनाई आपको दे रहा है ये मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूँ कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो अनाउंसमेंट सुनाई देता है वो बड़ा साफ सुनाई देता है, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो अनाउंसमेंट होता है वो इतनी दूरी हो जाती है कि हमको कुछ अजीब सुनाई देता है। 3 नंबर प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 4 प्लेटफार्म नंबर पर अनाउंसमेंट और अजीब सुनाई देता है। 5 का अनाउंसमेंट हमें कुछ समझ में नहीं आता। प्लेटफार्म नंबर 1,
1: अटेंशन प्लीज, बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे जिन यात्रियों को बॉम्बे से हावड़ा की ओर जाना है अपना टिकट प्राप्त कर ले।
0: बड़ा साफ सुनाई देता है। अब याद करिए प्लेटफार्म नंबर 2,
1: अटेंशन प्लीज, मैं पीछे हावड़ा की ओर जाने वाली मेलगाड़ी अपने निर्धारित समय पे मेरे यात्री को मैं पीछे हावड़ा की ओर जाने अपना टिकट प्राप्त कर।
0: 3 नंबर में आवाज और अजीब हो जाती है। चौथे का अनाउंसमेंट और अजीब होता
1: है।
0: 5 का अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आता। जिसको जहाँ जाना वहाँ चला जाए। अनाउंसमेंट खत्म होता है, लाइन लगना शुरू हो जाती है। लाइन कहीं की भी हो, चाहे टाकीज की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे रेलवे लाइन हो, लाइन एक सी होती है। इसमें अजीब अजीब आवाजें आपको सुनाई देने मिलती हैं। प्लेटफार्म में आवाज आई,
2: चाहिए चाय वाला, आलूंडाई समोसा वाला।
0: ए आलूंडा इधर आ जाओ, खिलाओ खिलाओ।
2: कितना कड़वा है यार।

0: साहब बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसी बात कर रहे हैं कड़वा कड़वा? अरे भैया कड़वा लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अरे बाबू साहब बिल्कुल, आप कैसा करते हैं, आप 2 दिन पहले निकले थे, आपको खिलाया था ना? हाँ खिलाया था, उस दिन तो बड़ा अच्छा था, उसी दिन वाला तो आज है ये। लाइन लग जाती है, लाइन लगने, अरे भैया, अरे बाबू, ए धक्का नहीं देना, कैसा कर रहे हो भाई साहब, ए धक्का मत देना, ओ भैया। एक भाई साहब खड़े थे, उनके दांत काफी बड़े थे, कहले भैया धक्का मत दो, सामने वाले की पीठ में दांत घुस जाएंगे। एक भाई साहब काफी मोटे थे, उन्होंने कहा ओ भैया ओ मोटे, धक्का मत दो, ओ भैया ए मोटे जी धक्का मत दो जी, मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ। अरे बाप रे, कंठा कर रहे यार। अरे भैया ये लाइन खत्म होती है, रेल ट्रेन आकर रुकती है और हम और आप दौड़ पड़ते हैं अपनी सीट के लिए। है भाई साहब जी, जी पेपर मेरा रखा था, मैंने रखा था, देखिए गलत बात मत करिए आप। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये पहले से मैं इतने दिन से इसी सीट में बैठ के आता हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ, आप बात कैसी कर रहे हैं? वो ठीक है भैया, ये मैं यहाँ बैठा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं डिब्बे के अंदर। एकदम से अंधेरा हुआ, अंधेरे के साथ साथ अब आप डिब्बे के अंदर जब बैठे रहते हैं तो कई बार ये होता है कि लोग भोजन करते रहते हैं और आपकी नज़र उनकी तरफ पड़ती रहती है कि भोजन कर रहा है आदमी और आपको नहीं पूछ रहा है, तो आप उसी के तरफ देखे रहते हैं। अच्छा, और मान लीजिए कोई आपको पूछ लेता है कि भाई साहब एक आध पूरी चलेगी, तो आप मना भी कर देती हो। क्यों मना कर देते हैं? कि यार ऐसा लगता है इसमें बेहोशी वाली पूरी ना हो। तो अब पूछे तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछे तो प्रॉब्लम है। अब उसके बाद सफर धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी का चलता है। टीटी को बोला एक आदमी ने कि भाई साहब ऐसा करना, मेरे को आप कटनी में उतार देना, और मैं बहुत तेज सोता हूँ, और जब आप मुझे नींद से उतारेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको गाली बकने लगूं, चिल्लाने लगूं, खींचने लगूं, क्योंकि मैं बचपन से मुझे कोई ने भी नींद से उठाया और मुझे इतनी जोर से चंडाली चढ़ती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूं। तो कब जब भी अगर स्टेशन आए तो आप मुझे उतारना, अगर मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं तो आप बुरा नहीं मानना, बस मेरा इतना निवेदन है। कहें ठीक है, मैं आपको कटनी में उतार दूंगा, आप आराम से सोइए, कोई बात नहीं। अगला आदमी कटनी स्टेशन के आगे जाकर सतना में लगा चिल्लाने टीटी को, आपको मैंने बोला था कि आप कटनी में मेरे को उतार देना, मैं सोता रह गया, आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, आप लोग समझते क्या हो। और टीटी जो खड़ा था टिकट कलेक्टर बेचारा चुपचाप खड़ा सुन रहा था, सुनते सुनते इतनी गालियां उसने सुन ली। और जब वो आदमी दूसरी ट्रेन पकड़ के कटनी की ओर चला गया तो मैंने टीसी से पूछा कि भैया उस आदमी ने यार इतनी गाली आपको बकी, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया, आपने ये भी नहीं बोला कि साहब मैं धोखे से नहीं उठा पाया हूँ, मैं भूल गया था, है कटनी की जगह आप सतना आ गए, कोई चिंता की बात नहीं, आप चुपचाप सोचते रहे, क्या बात थी? कहने भैया मैं ये सोच रहा था कि धोखे से जिसको जबरदस्ती कटनी में उतार दिया उसका क्या होगा।
1: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 11वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड जिले के लाहार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे।

मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और 20 जुलाई को फाइनल होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहनों, यह विषय केवल एक कहावत नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस यानी इंटरनेशनल होप डे के संदर्भ में इस विषय पर विचार करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि आशा केवल एक भावना नहीं बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और पूरे विश्वास को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। बहनों, यदि जीवन में उम्मीद ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। जब कठिन परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब केवल उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन जो व्यक्ति आशा का साथ नहीं छोड़ता वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। एक किसान बीज बोते समय उस उम्मीद के साथ मेहनत करता है कि उसकी फसल अच्छी होगी। एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई इस आशा से करता है कि वह अपने जीवन में सफल बनेगा। एक खिलाड़ी कठिन अभ्यास इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेगा। यदि इन सबके जीवन से उम्मीद समाप्त हो जाए तो उनके प्रयास भी समाप्त हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आशा ही हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की शक्ति देती है। बहनों, यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्ची आशा का संदेश है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अनेक वैज्ञानिकों ने वर्षों के असफल प्रयास के बाद भी सफलता प्राप्त की। आज का युग अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, सामाजिक असमानता और अनेक वैश्विक समस्याएं हमारे सामने हैं। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान निराशा से नहीं बल्कि आशा, सहयोग और सकारात्मक प्रयासों से ही संभव है। बहनों, हमें अपने जीवन में तीन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए: सकारात्मक सोच,

यदि ये तीनों हमारे साथ हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। उम्मीद हमें केवल सपने देखने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि उन सपनों को साकार करने का साहस भी देती है। इसलिए बहनों, कभी निराश ना हो और दूसरों को भी निराश होने से बचाएं, क्योंकि उम्मीद की किरण कभी बुझने न देना, मुश्किलों से कभी खुद को झुकने न देना। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह की रोशनी पर विश्वास कभी टूटने न देना।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक हटाएं, कागज के थैले अपनाएं के विषय में। बहनों, यह केवल एक विषय नहीं बल्कि हमारी धरती, हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश है। बहनों, आज पूरी दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। प्लास्टिक का उपयोग हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। बाजार से सामान खरीदना हो, भोजन पैक कराना हो या किसी वस्तु को ले जाना हो, हर जगह प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग देखने को मिलता है। सुविधा के कारण हम इनका उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनके दुष्परिणामों पर अक्सर ध्यान नहीं देते। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होती। इससे पूरी तरह गलते नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान यह मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करती है। नालियां जाम हो जाती हैं, नदियां और समुद्र प्लास्टिक कचरे से भर जाते हैं तथा अनेक पशु पक्षी इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आज समुद्रों में रहने वाले जीवों के पेट में प्लास्टिक निकलना एक सामान्य बात बन गई है। खेतों में प्लास्टिक मिलने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। जलाने पर प्लास्टिक जहरीली गैसें छोड़ती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे श्वसन संबंधी रोग, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है अब हमारे भोजन और पीने के पानी तक पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक सुरक्षित, सरल और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। यही विकल्प है कागज का थैला। कागज के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये आसानी से पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। इनके उपयोग से प्लास्टिक प्रदूषण कम हो जाते हैं। इनके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। यदि हम खरीदारी के समय अपने साथ कागज का थैला या कपड़े का थैला लेकर जाएं, तो प्लास्टिक की आवश्यकता बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। बहनों, विश्व पेपर बैग दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़े परिवर्तन की शुरुआत करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम कर दे, तो वर्ष भर में करोड़ों प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोका जा सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बहनों, केवल सरकार के नियम बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी। जब तक प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। हमें स्वयं भी प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। विद्यालयों में कागज के थैले बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। दुकानदारों को प्लास्टिक के स्थान पर कागज या कपड़े के थैले देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमें अपने जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में भी पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए बहनों, इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। खरीदारी के समय कागज या कपड़े का थैला साथ लेकर जाएंगे। अपने आसपास के लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सादगी में जीवन का सार है के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भाषण का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और संतोष का मार्ग दिखाती है। बहनों, सादगी का अर्थ केवल साधारण पहनना या कम संसाधनों में जीवन बिताना नहीं। सादगी का वास्तविक अर्थ है विचारों की पवित्रता, व्यवहार में विनम्रता, जीवन में ईमानदारी और आवश्यकताओं को सीमित करना। सादगी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके पहनावे, धन या दिखावे से नहीं बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और कर्मों से होता है। बहनों, आज का युग आधुनिक और प्रतिस्पर्धा का युग है। लोग अक्सर अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी दिखावे, महंगी वस्तुओं और अनावश्यक खर्चों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, लेकिन सच्चाई यह है
कि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि सादगी जीवन भर सम्मान और विश्वास दिलाती है। सादगी हमारे जीवन को निखारती है। एक सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति अहंकार से दूर होता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने कार्यों से समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष और लालच कम होता है। वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है और परिस्थितियों का धैर्य पूर्वक सामना करता है। बहनों, सादगी का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं, तब प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सादगी केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। विद्यार्थी जीवन में सादगी का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी अनुशासन, समय का सदुपयोग, मेहनत और सादगी को अपनाते हैं, तो वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। बहनों, हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों के माध्यम से सादगी को अपना सकते हैं, जैसे अनावश्यक खर्च से बचना, भोजन की बर्बादी न करना, बिजली और पानी का सोच विचार कर उपयोग करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, विनम्र भाषा का प्रयोग करना और सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना। यह छोटी छोटी बातें मिलकर हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। बहनों, सादगी कमजोरी नहीं, आत्मबल और आत्मविश्वास की पहचान है। आइए हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी, विनम्रता और संतोष को स्थान दें। हम दिखावे की संस्कृति से दूर रहकर अपने चरित्र और कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यही सादगी दिवस की सच्ची भावना होगी और यही हमारे जीवन का वास्तविक सार भी है।

बहनों, इन दिनों बाजार में दशहरी आम काफी आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, पाचन सुधरता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। यह विटामिन ए, सी और फाइबर से भरपूर होता है। इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं दशहरी आम से बनने वाले मैंगो लस्सी और मैंगो फिरनी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा दही, 1 कप दशहरी आम का गूदा, स्वादानुसार चीनी, कुछ बर्फ के टुकड़े। सभी सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। 1 गिलास में डालकर ऊपर से कटे हुए आम के टुकड़ों से और कुछ ड्राई फ्रूट से सजाकर सर्व करें। तैयार है मैंगो लस्सी। मैंगो फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप भीगा हुआ पिसा चावल, 1 लीटर दूध, 1 कप आम का गूदा, 1/2 कप चीनी, इलायची स्वादानुसार और मेवे बारीक कटे हुए जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। दूध में पिसा चावल डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं, चीनी मिलाएं और ठंडा होने दें। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें आम का गूदा मिला लें। मेवे से सजाकर फ्रिज में ठंडा करें और सर्व करें। तैयार है टेस्टी मैंगो फिरनी। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1:27 हुए हैं। समय है एक छोटे से संदेश का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे गोपाल कुमार पार्ष्णेय, मदन मोहन ब्रजवासी और माधुरी शर्मा के गाए लोकगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोक संगीत का कार्यक्रम क्षमा कीजिए संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे वीरेंद्र मैथिल की गाई गजलें।

0: वीरेंद्र मैथिल की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कॉमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला नगमा किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में फिल्म मोहब्बत से, इंदिवर का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आपके साथ फिल्म से आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित किया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया।

0: न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा महानवंबर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 238,96,00,000 रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर बीएसएफ परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सहभागिता की। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के साथ 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित कर वर्षा जल के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नागरिकों से इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में इस लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के आधार पर है। और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाकर दिखता है। मेरी
0: ई प्रवेश अभियान में अब तक से प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ के टूटला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में आयोजित पिंक लाइसेंस ड्राइव में करीब 80 छात्राओं ने निशुल्क लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और

0: अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं। इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।

0: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद। रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी शिखा दीदी लेकर आपका मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत कुछ लाइनों से करूंगी कि छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं, अच्छे संस्कार ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं, जो सीखते हैं हर दिन कुछ नया मुस्कुराकर वही बच्चे कल दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। बच्चों सुबह की ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की मीठी चहचहाट और रिमझिम बारिश की बूंदे हमें यही सिखाती है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर सुबह हमें कुछ अच्छा करने, कुछ नया सीखने और मुस्कुराकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। आप जानते हैं बच्चों, जीवन की बड़ी सफलताएं किसी एक दिन से नहीं मिलती, वो तो छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अपनी किताबों और आसपास की चीजों को सहेज कर रखना, प्रकृति से प्यार करना और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, यही छोटी छोटी आदतें बच्चों आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज से हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन कम से कम एक अच्छी आदत को हम जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आज की अच्छी आदतें ही बच्चों हमारे कल के उज्जवल भविष्य की नींव होती है। तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमसे जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, तो आपसे उनका परिचय करवाऊंगी और उन्हें मिलवाऊंगी इस गीत के बाद।
2: आई करंबा।

0: Huelna.
1: तो बच्चों, जैसा कि गाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ नए दोस्तों से, तो आइए सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, उनका नाम जानते हैं और वो हमें क्या बता रहे हैं ये भी सुन लेते हैं।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्ना दोस्त भुवेक पांडे।
1: क्या बात है भुवेक, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। बताइए भुवेक, आज आप क्या बताने वाले हैं बच्चों को?
2: आज मैं आपको एक ऐसे खास दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी धरती को हरा भरा और साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देता है। इस दिन का नाम यह विश्व पेपर बैग दिवस, जिसे हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से सामान लाने के लिए जो प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनका बाद में क्या होता है? प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, तो यह मिट्टी, नदियों, समुद्र और हवा तक को प्रदूषित करती है। कई बार तो गाय, कुत्ते, पक्षी और दूसरे

0: जानवर भी प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक जा सकती है। दीदी, इसलिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को यह याद दिलाता है कि अगर हम छोटी छोटी आदतें बदल दें तो धरती को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। इस अभियान को कई देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और जागरूक नागरिकों ने बढ़ावा दिया, ताकि लोग प्लास्टिक की जगह कागज और कपड़े को थैलों का उपयोग करने की आदत अपनाएं। अब सवाल यह है कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब भी मम्मी पापा के साथ बाजार जाएं, उन्हें कपड़े या पेपर बैग ले जाने की याद दिलाएं। स्कूल में पुराने अखबारों से सुंदर पेपर बैग बनाना सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। किसी भी कार्यक्रम या जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक की थैली की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, धरती मुस्कुराएगी जब आदत बदल जाएगी। प्लास्टिक को कहे ना, पेपर बैग को कहे हाँ। तो आइए, इस विश्व पेपर बैग दिवस पर हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि जहाँ भी संभव होगा, प्लास्टिक की थैलियों के बजाय पेपर बैग या कपड़े के थैलों का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि आज का हमारा छोटा सा कदम आने वाले कल की बड़ी मुस्कान बन सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।
1: अरे वाह भुवेक, बहुत अच्छी जानकारी आप लेकर आए हैं। और निश्चित ही ये जो पेपर बैग बनाने का आपने आइडिया दिया है ना, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मुझे आपकी ना वो बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी हमारे घर के बड़े कुछ सामान लेने जाए या कहीं जाए, तो हम उन्हें आग्रह करें कि वो कपड़े का या फिर जूट का थैला लेकर जाए। जब आप बच्चे इतनी समझदारी की बात करते हैं ना, तो हम बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। भुवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी के लिए। चलिए, आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ एक बहुत अच्छा सा गाना।

0: बच्चों अब आपको मिलवाती हूँ माही से। तो माही बताइए आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाली हैं?
1: नमस्ते दीदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं आज आप सबको एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ। मैं सब दोस्तों को बता दूँ कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया है। दीदी वो गीत मैं अब आप सबको सुनाती हूँ। न हो

तुम प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, न जो बर्फ की

0: झुककर तुम अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। थैंक यू दीदी।
1: कितना खूबसूरत गीत है माही ये। और बच्चा सबसे अच्छी बात कि आपने इसे गाया भी बहुत खूबसूरती और मासूमियत से है। अच्छा माही, हम सब जानना चाहते हैं कि ये गीत आपको किसने सिखाया।
0: दीदी, ये गीत मुझे मेरे स्कूल में सिखाया गया था। हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वहाँ हमने ये गीत गाया था।
1: अच्छा माही, आपने इस गीत में गाया कि न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो माही, इस गीत से, इन शब्दों से, इन लाइनों से आपने क्या सीखा?
0: दीदी, ये गीत हमें शिक्षा देता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।

0: और जो अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नंदिनी। तो आइए स्वागत करते हैं नंदिनी का। बताइए नंदिनी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं?
1: दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी पाटिल है। मैं शारदा रामकृष्ण विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों, बारिश तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बारिश एक जैसी नहीं होती। आसमान से गिरने वाली बारिश का रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ बारिश के कुछ मजेदार नाम। सबसे पहले ड्रिजल के बारे में बताती हूँ। जब बहुत हल्की हल्की फुहार जैसी बारिश होती है तो उसे ड्रिजल कहते हैं। दोस्तों, जब थोड़ी देर के लिए अचानक तेज बारिश हो और फिर रुक जाए तो उसे शार कहते हैं। दोस्तों, डाउनपोर, जब बहुत तेज और लगातार बारिश हो उसे डाउनपोर कहते हैं। अब क्लाउड बस्ट के बारे में बताती हूँ। जब बहुत कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए, इसे क्लाउड बस्ट या बादल फटना भी कहते हैं। अब बताती हूँ बारिश के सबसे सुंदर मिस्ट के बारे में। यह बारिश नहीं बल्कि हवा में तैरती बहुत महीन पानी की बूंदें होती हैं, जिन्हें हम मिस्ट या हल्का कोहरा कहते हैं।

0: आइए दोस्तों, अब जानते हैं फॉग के बारे में। जब कोहरा इतना घना हो जाए कि दूर की चीज़ें दिखाई ना दे, उसे फॉग कहते हैं और हम ये अक्सर सुबह सुबह देखते हैं। अब बताती हूँ स्लीट के बारे में। जब बारिश की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे कण भी गिरे तो वह स्लिट होता है। अब स्नोफॉल के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो दोस्तों, जब बारिश की जगह बर्फ गिरे तो वो होती है बर्फबारी, यानी स्नोफॉल। अब सबसे सुंदर बारिश, जिसे हम सनशार कहते हैं, जब धूप भी निकली हो और उसी समय बारिश भी हो रही हो तो वो होता है सनशार। और हम रेनबो भी सनशार में ही देखते हैं। इसके अलावा एक होती है मॉनसून रेन। बरसात के मौसम में होने वाली नियमित वर्षा को मॉनसून रेन कहते हैं। तो दोस्तों, अब अगर कोई पूछे कि बारिश हो रही है तो आप सिर्फ इट्स रेनिंग ही नहीं, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि ड्रिजल, डाउन पोर, क्लाउड बर्स्ट या सनशार हो रही है। बारिश के भी कितने रंग और कितने नाम होते हैं। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है दोस्तों।
1: अरे वाह नंदनी, आपने तो इस मौसम के हिसाब से जितनी भी बारिशें होती हैं उन सब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी कलेक्ट की। और वाकई बच्चों, हमेशा इट्स रेनिंग बोलना ठीक नहीं है। तो नंदनी ने जिन शब्दों को बताया है, हमें उन शब्दों को ध्यान रखना है, उन्हें सीखना है और उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करना है। तो नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: थोड़ी बारिश हो गई तो आसमां धुल गया।

तो बच्चों आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे नंदिनी, भुविक और माही। तो बच्चों आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वीकार कीजिए शिखा दीदी का टाटा, बाय बाय और जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेचीस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में 21,00,000 पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया। डॉक्टर यादव ने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में वीरता और समर्पण का परिचय देने वाले सेना के जाबाज जवानों एवं अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है। भोपाल में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से एक विशेष साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 सीए स्टूडेंट्स और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:30। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण 7:21 पर होगा, जिसमें 7:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। रात 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात 8:15 कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति होगा। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 9:30 आप सुन सकेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में कुमार मर्दुर का गायन। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज

ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

कई मेले ठेले ऐसे अवसर आए जब हमने सोचा कि हम जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाए हैं। और एक बार हमने सोचा जाएं, तो जब भी ऐसा सोचा तो कभी शहर के बाहर या देश के बाहर जाने की विदेश यात्रा के लिए बारे में, तो ऐसा समझ में आया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बाहर हैं, अब देश में एक आध कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को होना जरूरी है, इसलिए हम ऐसी पोजिशन में जा नहीं पाए। और आगे फिर हमने एक बार ऐसा प्रयास आया कि फुटबॉल के दौरान हमको विदेश यात्रा का मौका लग गया और हम दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए। आपको बता दें कि हम जबलपुर आकाशवाणी से बोल रहे हैं, दक्षिण कोरिया मतलब विदेश में है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भेड़ाघाट के आसपास कहीं है। तो दक्षिण कोरिया हम जैसे ही पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के लिए हमें बाहर जैसे ही हम वहां पता लगा, घर से पहले लिस्ट बना के ले गए थे कि जिस सामान लेना है वो सामान लेना, श्रीमती ने भी लिस्ट, अपने सामान की भी लिस्ट, जैसे ही वहां पता किया तो बड़ा महंगा, 5,000 का जूता, अरे बाप रे 5,000 का जूता। हमने कहा बहुत, शाम को वहाँ डिनर पे लोगों से बातचीत हुई तो वहाँ लोगों ने बताया, बोले साहब ये बहुत तरक्की वाला देश है, अभी आपके हिंदुस्तान को तो 50 साल लगेंगे, हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ तो 5,000 का जूता मिलता है।

0: नई दिल्ली में वृक्ष मृत और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होने का अनुमान है और फीफा विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 20 जुलाई को आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। आइए साथियों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों, आज की बात का

हमारा आज का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस उपलक्ष्य में। साथ ही चर्चा करेंगे वर्ल्ड पेपर बैग डे पर। जीवन आलोक में बात करेंगे कर्मठ बने आलस्य का परित्याग करें। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। विषय रहेगा सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार होंगी प्रज्ञा गौतम और इस सफर में सुनेंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जहां चाह है वहां राह है। कई महान विचारकों का मानना है कि आशा एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ना और उम्मीद बनाए रखना ही हमारे जीवन में तथा समाज में बड़े बदलाव का कारण बनता है। दोस्तों, आशा जीवन का यह शक्तिशाली प्रकाश है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन आशा एक उम्मीद जो हमारे मन में जागृत होती है, उसकी डोर से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसी भावना को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक हमेशा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथियों, इसी विषय पर एक सुंदर सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। चाहे कितनी धुंध पड़ी हो, किंतु अंत में छट ही जाती। गहन कालिमा निविड़ निशा की, प्रातः को कब है रह पाती। चले आंधियां भले भयंकर, पर्वत लेकिन अविचल रहता। पथ की सब बाधाएं सहकर, जल नदियों का आगे बहता। फिर पाकर हम थोड़ा सा दुख, इस जीवन से क्यों घबराएं। तूफानों से हार न माने, आशाओं के दीप जलाएं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति निराशा या डिप्रेशन में होता है, तो आशा ही उसे जीवन जीने का नया कारण देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस का थीम आशा की शक्ति एक उज्जवल और एकजुट भविष्य का निर्माण है। साथियों, आशा हमें हर परिस्थिति में दृढ़ एवं आत्मविश्वासी रहने में मदद करती है। आशावादी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देता है, जो उसे औरों से अच्छा काम करने, अच्छा सोचने एवं आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहायक होता है। आशा एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो जीवन की गाड़ी को मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाती है। आशा बेहतर भविष्य की कल्पना और उसे पाने का अटूट विश्वास है। बिना उम्मीद के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह एक दीपक के समान है जो जीवन के कठिन रास्तों पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद और विश्वास पर दुनिया कायम है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व पेपर बैग दिवस पर। दोस्तों, प्लास्टिक बैग इस समय सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही ये बैग हमारे सेहत के लिए भी खतरनाक है। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगा। साथियों, प्लास्टिक को नष्ट होने में हजारों साल लगते हैं, जबकि पेपर बैग जैविक रूप से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पेपर बैग के उपयोग के महत्व को समझकर उसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
साथियों, पेपर बैग

0: की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में देखी गई थी, जब फ्रांसीसी बोले द्वारा 1852 में पहली बार पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया गया। इस आविष्कार ने पेपर बैग के उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे पैकेजिंग समाधान के रूप में पेपर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। कागज के बैग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं। ये बैग पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं और प्लास्टिक बैग द्वारा उत्पादित प्रदूषण की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। द वर्ल्ड काउंट्स के अनुसार हर साल अनुमानित 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह एक समस्याग्रस्त संख्या है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। लैंडफिल में प्लास्टिक को टूटने में सैकड़ों साल लग सकते हैं और यह वन्य जीवों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। पेपर बैग पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से विघटित होते हैं और इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इन्हें संधारणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है और इन्हें आसानी से रिसाइकल या त्यागा जा सकता है। आज के इस दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि प्लास्टिक का उपयोग त्याग कर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, समय है एक महत्वपूर्ण वार्ता सुनने का, जिसका विषय है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: नमस्कार साथियों, आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों, सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीजें

देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है। और दोस्तों, कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए, तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और

0: आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना, सच कहती हूँ मान लो कहना, दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: साथियों, सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें, इस विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। इसकी वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं जीवन आलोक की, जिसमें हमारा आज का विषय है कर्मठ बने, आलस का परित्याग करें। साथियों, मनुष्य के जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार कर्मठता है। कर्मठ व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है। इसके विपरीत आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है, जिससे उसके जीवन में असफलता, निराशा और पछतावा पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मठ बनने और आलस्य का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, कर्मठता व्यक्ति को अनुशासित, आत्मनिर्भर और सफल बनाती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है और नियमित रूप से अपने कार्य करता है, वह जीवन में अवश्य प्रगति करता है। विद्यार्थी यदि कर्मठ हो तो वह पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, शिक्षक और सैनिक सभी अपनी कर्मठता के कारण समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। आलसी व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता, जिससे उसके अवसर हाथ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आलस्य स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे शरीर में सुस्ती, मोटापा और अनेक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कर्मठ बनने के लिए हमें प्रतिदिन समय पर उठना, नियमित दिनचर्या अपनाना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति, सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन भी कर्मठता को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थी जीवन में कर्मठता का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी नियमित अध्ययन करें, समय का सदुपयोग करें और आलस्य से दूर रहें, तो वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का परिश्रम ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। कर्मठता सफलता की कुंजी है और आलस्य असफलता का मुख्य कारण। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना मित्र और आलस्य को अपना शत्रु बनाता है, वही जीवन में सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त करता है। इसीलिए हमें सदैव कर्मठ बनने, समय का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए। यही व्यक्तिगत उन्नति, समाज की प्रगति और राष्ट्र के विकास का सबसे सशक्त मार्ग है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं यह गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म चलते चलते से। इस गीत को अपनी आवाज दी है अभिजीत और साथियों ने।

अभी आपने सुना यह खूबसूरत सा गीत फिल्म चलते चलते से। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अपने दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

डीजे प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह, बादशाह, जॉनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज में, फिल्म ए दिल है मुश्किल से।

0: कर दे दिल की फीलिंग स्ट्राइक।
1: प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल अरिजीत सिंह बादशाह जोनिता गांधी और नक्काश अजीज की आवाज में गीत सुना अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है धूम 3।

जूलियस का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, सुनिधि चौहान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म धूम 3 से। कार्यक्रम का अगला गीत नेहा भसीन की आवाज में आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से।

सुहेल सेन का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल नेहा भसीन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है बार बार देखो से, आवाज है अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कड़ की।

जसलीन रॉयल का संगीत अमरीक सिंह कुमार का के लिखे बोल, अमर अर्शी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म बार बार देखो से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है डियर जिंदगी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां

0: आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दुनिया की खबर भी जरूरी,
2: ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
3: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने

कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। और फीफा विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 20 जुलाई को आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू साथी संजीवनी की आवाज में फिल्म करीब से।

अनु मलिक का संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बिच्छू से। आवाज है हरियानंद और जसपिंदर नरूला की।

आनंदराज आनंद का संगीत, समीर के लिखे बोल। जसविंदर नरूरा और हैरी आनंद की आवाज में फिल्म बिच्छू से आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत की आवाज में, साथ है अलका याग्निक। फिल्म का नाम है बादशाह।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म बादशाह से। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज़ में प्रस्तुत है गुप्त फिल्म से।

0: बिरजू शाह का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में गीत सुना अपने फिल्म गुप्त से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं कंथराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये अगला गीत। अलका याग्निक के साथ है कुमार सानू और फिल्म का नाम है सोल्जर।

अनु मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सोल्जर से। कार्यक्रम का अगला गीत अदनान सामी की आवाज में प्रस्तुत है फिल्म अजनबी से, साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म अजनबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और चंदना दीक्षित की आवाज में। फिल्म का नाम है कूली नंबर 1।

आनंद मिलन का संगीत, समीर के लिखे बोल, अभिजीत और चन्ना दीक्षित की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म कुली नंबर वन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल, सुखमिंदर सिंह, जसपिंदर नरूला और अनमोल मलिक की आवाज में फिल्म बादल से।

0: अनुमलिका संगीत समीर के लिखे बोल अनुराधा पौडवाल सुखविंदर सिंह जसविंदर नरूला और अनमोल मलिक की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म बादल से। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www

0: www.prasarbharatiarchives.co.in याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7

0: विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रसारित होगा आज रात 8 बजे। आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की सुन सकेंगे रात 8:15 पर। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10 बजे सुनिएगा कुमार मर्दुर का गायन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है की 12वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर। स्वास्थ्य दर्पण सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1:30 पर और 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये चारों कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होंगे। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में सुन सकेंगे कल रात 8 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में कल रात 10:30 पर सुनिएगा सुप्रिया मोइत्रो का ध्रुपद गायन राग भिन्न षडज। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज रात 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां धान की उन्नत उत्पादन तकनीक और साम्यक कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में दसरू राम और साथियों द्वारा गाए हुए कोंडी लोकगीत सुनवाएंगे हम आपको। और 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम आईना। जिले की चिट्ठी सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर सुने कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुबह 10:30 पर सुनेगा अलका देव मारुलकर का गायन राग ललित। कल रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वृक्ष मित्र कार्यक्रम को किया संबोधित। इंदौर में मुख्यमंत्री ने 21,00,000 पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया। और प्रदेश में तेज बारिश, 4 दिन का ब्रेक, आज 27 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 322,29,00,000 रुपए की लागत के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों का सम्मान और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी।
1: 1,835 करोड़ की लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली। 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी नजर आया है। चंबल अंचल के इतिहास में पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी उम्मीदवार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। उधर कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। घनश्याम सिंह भी कल नामांकन पत्र भरेंगे। इसके अलावा दतिया से आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2023 में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश, परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य उच्च विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले 2 संस्करणों ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी निवेश को नई गति प्रदान की है। कॉन्क्लेव 1.0 और 20,000 कृपया से दोबारा सुन लें। कॉन्क्लेव 1.0 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 75,000 रोजगार

0: के अवसर सृजित हुए। कॉन्क्लेव 2.0 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 48,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है। श्री चौहान ने यहाँ अर्थ यानी पृथ्वी का अनोखे अंदाज में अर्थ समझाया।
3: ERTH, अभी आपको बताए, कमरे से निकलो, एनर्जी छोटी चीजें, बिजली का स्विच ऑफ कर दो, ये प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा ऑफ करेगा। ऐसे अवॉइड प्लास्टिक की बात, सब्जी लेने जाओ तो कपड़े का थैला ले जाओ, तो कागज की थैलियां भी बन रही है। नल टपक रहा हो तो टोंटी ठीक से बंद करो, नहीं तो सुधरवाओ। पानी की बोतल में आधा पानी मत छोड़ो, बोतल संग लेके जाओ, एक एक बूंद पियो। कई बार वो भी चलता है, पी 2 घूंट और फेंक दी। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, ट्रैश मैनेजमेंट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग, खाओ और कहीं भी फेंक दो, आदत बदलनी पड़ेगी। और ऐसे हेल्दी फूड, मोटा अनाज।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत BSF पहाड़ी से 21 लाख पौधारोपण के अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि जो हमें जीवन दे, सदमार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी और वसुधा का श्रृंगार भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा एक पेड़ माह के नाम अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र तैयार होता है, ये अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सहभागिता की। शिवपुरी जिले में PM पोषण योजना के तहत कुल 2,500 स्कूलों के 1,593,524 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी 2,149 स्व सहायता समूह के पास है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज और भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होगी। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की अनुमान जताया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में हल्की बारिश

चौरानी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में लाडली बहना योजना के तहत 38वीं किश्त से 2,26,846 महिलाओं के खातों में राशि जमा हुई। राजगढ़ के चारपुरा गांव में कल आयोजित हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले को मार्च 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आगर मालवा जिले के कानड़ में आयुष मेडिकल ऑफिसर ने मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सही समय चुनना और 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने के बारे में जानकारी दी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में सतर्कता विभाग की 2 दिवसीय कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा मौत मामले में एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10।

0: दी। हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
8: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन के काजे साधना की राम राम। देखो भैया, अपन देख रहे हैं कि अब बारिश को टाइम आ गया है, तो भैया ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कैसे कि भैया जा टाइम चौमासे में भैया बीमारी ज़्यादा फैलते हैं, तो ऐसे में हमें ज़्यादा सुरक्षा रखना है। भैया गंदे पानी के सेवन से बचें, पानी को हमेशा उबाल कर ही पिए। और हाँ भैया, कहीं जब भी अपन बाहर जाएं तो इतने बते भैया खुला पानी अपन को नहीं पीना है। तो जाके लाने सबसे अच्छी बात है कि अपने घर से अपनी बोतल भर के ले जाएं। खुला पानी के सेवन से भैया अपन बीमार हो सकते हैं। कैसे कि जो टाइम जो चल रहा है भैया बरसात के टाइम में, उल्टी दस्त डायरिया जैसा बीमारी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हमें ऐसे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कैसे कि भैया जाटे मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मच्छरों से बचाव के लाने अपन क्या कर सकते हैं कि अपन घर में पूरी आस्तीन के कपड़ा पहनना चाहिए। और भैया सोते टाइम मच्छरदानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भैया बाजार में मच्छर के बचाव से तरह तरह की अगरबत्ती भी आवत हैं, अपन बने लगा कर मच्छर भी बिन से भग जाते हैं। तो ऐसे अपन को मच्छर से बचाव करने हैं। और भैया अपने पैरन में नारियल को तेल जरूर लगाना चाहिए। नारियल के तेल लगावे से भैया मच्छर जो है वो नहीं काटते हैं। और अपन को इन सब बातों को ध्यान रखने हैं। और अपने घर में जो कूलर चल रहे हैं बिनको पानी साफ करके रख दें। कैसे कि भैया पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी अगर कूलर में भरो रहे थे और अपन चला नहीं रहे हैं, फालतू भरो है, तो वहाँ में मच्छर पनप जाते हैं। तो अपन को क्या करने हैं भैया कि अपने कूलर वो सब साफ करके रखते हैं। और अगर अपनी छत पे भैया पुराने टायर और कोनऊ प्लास्टिक के डिब्बा ढक्कन ये सब अगर छत पे पड़े हैं, तो सबसे पहले छत की सफाई करें। कैसे कि जब बरसात होएगी और जो बरसात को पानी वो टायर में भर जाएगा, फिर वो कई

तक भैया ऐसे ही भरा रहेगा, धूप होएगी, फिर वहां में मच्छर पनप जाएंगे, वो पानी में मच्छर पनपेंगे और वो अपने घर में आ जाएंगे। तो जाके लाने भैया, जाट हम अपनी छत की बिल्कुल सफाई रखें, ऐसा कोनो भी सामान अपन को छत पे नहीं छोड़ने हैं जब मैं पानी भर सके। ऐसी छोटी छोटी बातन को अपन को ध्यान रखना चाहिए जब ये भैया अपन जाट हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अब अपन आगे बात करेंगे भैया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। भैया जो योजना किसानों की खेती, फसल विपणन और भैया संबंधित गतिविधियों के लाने, जैसे दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन आदि के लाने बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, जहाँ में भैया समय समय पर जा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जो योजना भैया शीघ्र पुनर्भुगतान के काजें मात्र 4% प्रतिवर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख तक की ऋण सीमा प्रदान करते हैं। ये जाकी पात्रता के दायरे में 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र होते हैं और किराएदार, किसान और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। यह जो योजना 1998 में शुरू करी गई थी, जो योजना विनकी खेती के कामों के लिए पर्याप्त समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू करी गई है, जैसे भैया किसान भैया अपना काम समय पर शुरू कर सके। 2025-26 में भारत सरकार ने किसानों को क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा में वृद्धि भी करी है, जहाँ में 3 लाख से बढ़ाकर भैया 5 लाख तक की राशि करी गई है। भैया जो योजना किसानों के लाने बहुत ही फायदेमंद योजना है, जैसे भैया इनको कोनो भी काम नहीं रुकेगा और सारे काम भैया अपने आप आसानी से हो जाएंगे और बिना सरकार द्वारा जो राशि भी प्राप्त कराई जाती है। तो जो योजना भैया बहुत ही बढ़िया योजना है। और अब अपन आगे बातचीत तो और करेंगे, पहले सुन लें कुछ जरूरी संदेश।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

चलिए इसके बाद अपन आगे बात करेंगे भैया। तो अपन को सबसे पहले भैया क्या करना है कि अपनी गांव की जो पंचायतें हैं बिना स्वच्छ बनाना है भैया। पंचायतों को सुंदर और स्वच्छ बनावे के लाने केवल सरकारी प्रयास पर ही अपन को निर्भर नहीं रहने हैं। हमें भी भैया, हम जो नागरिक हैं बिना भी बराबर की भागीदारी देनी चाहिए। अगर हमें अपनी गांव पंचायतों को स्वच्छ बनाना है तो सामूहिक सफाई अभियान चलाना चाहिए और भैया लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। जागरूकता से भैया बहुत, जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हम वो सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं जो हमें करना चाहिए। तो भैया जागरूकता बहुत जरूरी है। तो अपन को साफ सफाई के प्रति जागरूकता होना चाहिए कि भैया सफाई अपने लाने कितनी जरूरी है, और सार्वजनिक सड़कों नालियों की भैया नियमित सफाई हो वो बहुत जरूरी है। जैसे भैया का होता है कि कूड़े को प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। अगर भैया कचरा इतने बिते फैलो रहेगा तो सफाई बिल्कुल भी नहीं होगी और वो कचरा नालियन में जाके फंस जाएगा। तो भैया कहवे को मतलब ये है कि कूड़े को प्रबंधन सही तरीके से होना चाहिए और अपने नालियों की जो सफाई है वो नियमित तरीके से होनी चाहिए। और भैया मक्खी मच्छर से बचाव के लाने अपन को अपनी नालियन को चलायमान भी जरूर रखने हैं। और भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी पंचायत और अपने गांव को सफाई रखवे के लाने शौचालय को प्रयोग करवो। शौचालय को प्रयोग करवो बहुत जरूरी है। हर घर में शौचालय तो भैया बने हैं गांव-गांव में, सरकार द्वारा भी बनवाए गए हैं, मगर इनको इस्तेमाल कर

0: वो बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह भैया शौचालय बंद पड़े रहते हैं, बिन में और भी फालतू सामान भर दो जाते हैं और शौच गिलाने खुले में चले जाते हैं, मगर ऐसो बिल्कुल गलत है, हमें ऐसो नहीं करने हैं। हमें भैया स्वच्छता अपनाने हैं और शौचालय को ही प्रयोग करने हैं, जब ही भैया अपने गांव स्वच्छ रह सकेंगे। और अगर अपने गांव स्वच्छ रहेंगे तो अपन भैया बीमार नहीं पड़ेंगे और अपनी पंचायतें सब सुंदर और स्वच्छ हो जाएंगी। और भैया हमें अपने गांव में को सुंदर बनाने के काज हैं पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। भैया गांव एकदम हरो भरो दिखना चाहिए, तभी भैया हम सच्चे नागरिक होवे को फर्ज अदा कर सकते हैं। हमें भैया हमेशा पेड़ लगाना चाहिए, और बस सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ना नहीं है, जो पेड़ हमने लगाओ है बाकी अपन को देख रेख भी करने हैं। जब तक वो छोटो सो पौधा थोड़ो बड़ो ना हो जाए, वो बड़ो हो जाएगा फिर अपन को बाकी देख रेख की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पानी खाना खुद ही स्वतः तैयार कर लेगा। मगर भैया जब तक वो पौधा छोटो है तब तक हमें बाकी देख रेख करना पड़ेगी। हमें समय पर पानी समय पर खाद देवो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सूख जाएगा। जैसे भैया अपने छोटे बच्चन की अपन ज़्यादा सेवा करते हैं, वैसे ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़रूरत नहीं होते, ऐसे ही भैया हमें पेड़ पौधन में भी छोटे हैं तब इन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होते है, बड़े हो जाएंगे भी तो अपनों सब काम खुद ही कर लेंगे। तो कहवे को मतलब जो है भैया कि हमें अपनी पंचायतों को अपने गाँव को अगर सुंदर और स्वच्छ बनाने हैं तो पेड़ जरूर लगाना चाहिए और हर जगह भैया स्वच्छता रखना चाहिए। अपन को कचरा इतने बितें बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, कचरा फेंकने से बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाते हैं और गंदगी के संग संग भैया मक्खी मच्छर भी पनप जाते हैं। तो अपन को जब बात पे विशेष ध्यान रखना है, हम सभी को भैया थोड़ो सो जागरूक होवे की ज़रूरत है। अगर हम सब थोड़े जागरूक होंगे तो ऐसी गलतियाँ अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और हमें स्वच्छता रखने चाहिए, अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो भैया अब अपन आगे और बताएंगे, अभी हम आप लोगों के लाए हैं बहुत ही बढ़िया भेंट वार्ता जाको विषय है जोड़ों का दर्द कारण लक्षण और उपचार, और जामे अपन को जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज शर्मा जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो सुनते हैं भैया अपन जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, चौपाल कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह की भेंट वार्ताएँ सुनवाते हैं, जानकारियाँ देते हैं और ये सब आपके जो व्यवसाय है खेती से संबंधित उसको तो प्रभावित करता ही है, उसमें आपको ज्ञान देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद का स्वास्थ्य। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे आप जीवन को आगे चला पाएंगे या आपका जो व्यवसाय है आप उसे कैसे सही ढंग से स्मूथली चला पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो खुद का स्वस्थ रहे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसी के हिसाब से तरह तरह के चिकित्सक हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है हड्डियों के जोड़ कारण लक्षण और उपचार। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियाँ और हड्डी से संबंधित कई बार जोड़ों में जॉइंट्स में दिक्कत आने लगती है और दर्द होता है, और दर्द होने के कारण फिर हम जो भी हमारा काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अभी आज हमारे साथ हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज जो शिवपुरी की आम युवा में कहा जाता है उसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ कहा जाए विभागाध्यक्ष कहा जाए डॉक्टर पंकज शर्मा, आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर साहब सभी सुनने वालों के बीच में स्वागत करते हैं।
2: सभी को मेरा नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब जैसा कि विषय मैंने बताया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है परिपक्व होता है आदमी इंसान, कई तरह की औरतों से संबंधित हड्डियों से संबंधित रोग आने लगते हैं और एक अमूमन जो रोग आया वो जोड़ जॉइंट्स पेन, तो ये क्यों होते हैं और पहचान क्या है कि ये जॉइंट्स पेन है, इस विषय में।
2: जितने भी जोड़ हैं शरीर के वो जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा चलना फिरना बैठना सभी जोड़ों से होता है। तो जोड़ों की बेसिकली जो बीमारी है वो बुजुर्गों में होती है, 60 वर्ष के बाद या 65 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को जोड़ से तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक उम्र का भी लक्षण है। दूसरे तरीके के जोड़ में

0: तरह की बीमारियां होती हैं, या फिर पुराना चोटिल जोड़ है, या फिर जो है कई तरह की ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें कि जोड़ अर्ली यानी कि शुरुआती अवस्था में ही इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब उन जोड़ों की बीमारियां होने लगती हैं। इनके मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो सबसे मुख्य लक्षण दर्द है, क्योंकि जो भी मरीज हमारे पास आता है वो दर्द को लेके आता है। इसके साथ साथ उसमें लालिमा भी हो सकती है, सूजन हो सकता है, जकड़न हो सकती है और उसको चलने में दिक्कत आ सकती है। ये प्रमुख लक्षण हम कहें किसी भी जोड़ के होते हैं। जोड़ शरीर के किसी भी जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि कंधे का है, कोहनी का है, कलाइयों का, और हम आमतौर पर देख रहे हैं कि घुटने का दर्द लेके ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलने का आपने जिक्र किया, तो चलने का संबंध तो सिर्फ पैरों से है, लेकिन जॉइंट्स तो हमारी एल्बो भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम लेते हैं हम लोग टेनिस एल्बो, जो खिलाड़ियों में ज़्यादातर आती है, और खिलाड़ी यूथ होगा, तो किसान परिवार में उसका जो बच्चा है, जो यूथ है, लेकिन समय के साथ पिता के साथ वो व्यवसाय में मदद कर रहा है और फिर वो श्रम साध्य काम कर रहा है, तो उसको भी ये संभावना हो सकती है। कोई भारी चीज़ उठा रहा है, वहाँ पर भी जॉइंट्स का पेन हो सकता है, हमारी एल्बो में हो सकता है, हमारी कलाई के जोड़ में हो सकता है। तो पहचाने कैसे? आपने कहा दर्द, कई बार दर्द आदमी पहचान नहीं पाता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक दर्द होगा?
0: देखो, कोई भी जोड़ है वो एक तो जोड़ के पास दो हड्डियों का मेल होगा, साथ में उनको जोड़ने के लिए तंतु होंगे एवं मांसपेशियाँ होंगी। तो जोड़ का दर्द और जोड़ के आसपास का दर्द, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जोड़ यानी कि हड्डियों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से है, उनके ऊपर जो चिकनी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके जोड़ मतलब बीमारी में इन्वॉल्व होने के वजह से, या उसके आसपास की मांसपेशियों के वजह से है। तो मांसपेशियों का जो दर्द होगा वो जॉइंट के आसपास तो होगा, लेकिन वो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको इतना प्रभावित नहीं करता है, मूवमेंट कर पाता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर जोड़ के अंदर है तो वहाँ सूजन आएगी और उसका जो चिकनी लेयर है उसमें भी खराबी आएगी, तो उसकी मूवमेंट भी प्रभावित होती है, यानी कि उस हाथ को चलाने में उसको तकलीफ होगी। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, तो ये एक तरह का जो टेनिस एल्बो है ज़्यादातर यंग अवस्था में लोग या फिर 30 से 40 या 50 वर्ष के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका नाम टेनिस एल्बो के साथ साथ इसको ओवर यूज सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब किन्हीं मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग कर लिया। जैसे टेनिस खेलने वाले, तो नॉर्मली इसका नाम टेनिस खेलने वाले दिया है, लेकिन ये उन महिलाओं में जो खाना पकाने के लिए भारी कचड़ी का उपयोग करती हैं या फिर भारी झाड़ू उपयोग करती हैं, तो उनमें भी टेनिस एल्बो हो जाता है। तो अगर जोड़ इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें सूजन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर तंतु इन्वॉल्व हुआ है तो वो उस पॉइंट पे पेन देगा, उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें वो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। दोनों के इलाज में भी कहीं ना कहीं अंतर होता है।
1: अब क्या इनका इलाज वर्तमान में संभव है?
0: देखो, जो अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और उनका निरंतर उन पर शोध का कार्य चल रहा है कि और अच्छे से अच्छा क्या इलाज हम कर सकते हैं। साथ ही इस पर भी शोध चल रहा है कि उन बीमारियों को शुरू में ही रोका जाए जिससे वो बीमारियां ना हों। जैसे हम घुटनों के दर्द की अगर बात करें, तो हमारा जो घुटना है वो 40 वर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा लक्षण देने लगता है, मतलब कहते हैं कि जी बुढ़ापा का पहला जो है ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम इस चीज़ को भांप लें और हम अपने जीवन की जो दिनचर्या है, अपने खान पान का व्यवहार है, कसरत है, व्यायाम है, अच्छा भोजन है, जिसमें कि कहें कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, तो इन रोगों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं या इनकी गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे कि उम्र के साथ आए तो लेकिन बहुत धीमी गति से आए। जैसा कि हमने देखा है कि एक 80 वर्ष के बाबा जी हैं, उनके घुटनों में बदलाव तो बहुत है लेकिन वो कभी दर्द नहीं कहते और रोज़ घूमते रहते हैं और कहते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, भले ही वो हड्डियाँ उम्र के साथ टेढ़ी हो रही हैं। तो वो रोग उनको धीरे धीरे आया है ना, तो उसको रोग ना कह के उसको हम कहते हैं कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है,
1: समय का बदलाव है।
0: लेकिन वही प्रॉब्लम या वही बदलाव अगर 60 वर्ष पे ही आ जाएगा तो व्यक्ति का घुटना धीरे धीरे और खराब होगा और आगे चल के उसको बदलना भी पड़ सकता है,
1: नी रिप्लेसमेंट पे जाना
0: पड़ सकता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम रोग को समझें और भविष्य में उनका क्या होने वाला है उसको पहले ही समझ के उनको रोकथाम के

0: इलाज करें।
1: इंसान को कौन सी दिनचर्या या कौन सा पोस्चर अपना अपनाना चाहिए या कौन से पोस्चर से बचना चाहिए ताकि संभावना को थोड़ा लंबा किया जा सके?
0: देखो, हड्डी के बारे में कहा गया है कि हड्डी का जो निर्माण है वो 30 से 35 वर्ष तक होता है। मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो 35 से 40 वर्ष तक बनती है।
1: यानी हड्डी पूर्ण युवा 40 की उम्र में होती
0: 40
1: है।
0: 40 की उम्र तक उसमें हम जैसे धन जोड़ते हैं वैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही प्रतिवर्ष हम माने तो 0.5% के हिसाब से हड्डियाँ कमजोर होना चालू हो जाती हैं
1: पर ईयर।
0: तो इसका मतलब ये है कि जो धन हमने कमाया है यानी कि जितनी हड्डी हमने मजबूत की उसको हमें आगे उपयोग करना है
1: जी।
0: तो जिन महिलाओं में या पुरुषों में जिनमें हड्डियाँ शुरू से कमजोर हैं तो संभावना है कि उनको हड्डियों के रोग और जोड़ों के रोग जल्दी उम्र में ही आ जाएंगे। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की, अपना अच्छा व्यायाम किया, अपने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक पे भी ध्यान दिया, या जो खिलाड़ी हैं उनका बोन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कि लंबे उम्र तक भी उनके हड्डियों और मांसपेशियाँ उनको परेशानी नहीं देती हैं। तो प्रिवेंशन में यही कहना है कि हमें शुरू में कमाना है, अपने हड्डी को प्यार करना है। हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे फास्ट फूड पे जा रहे हैं जिसमें कि कोई पोषक तत्व नहीं है, तो उनका हम क्या सोच सकते हैं, क्या उनका हड्डी का निर्माण उतनी मजबूती से हो पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 30-35 तक बनना है, अगर 20% कमाया हो तो उसी में से आगे खर्च करना है, और 100% कमाया तो उसमें से आगे बढ़ना है। और महिलाओं में और प्रॉब्लम है, जैसे महामारी बंद होने के बाद शरीर में हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी अगर कमी होना चालू हो जाती है तो महिलाओं में वो 0.5% की बजाय अब 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से हड्डियाँ कमजोर होना लगती हैं।
1: हमने समस्या थोड़ी जो नेचुरल उनकी जो प्रोसेस है उसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा है।
0: गाँव में हमने अपनी दादी या किसी महिला को देखा है कि वो झुक के चलती हैं, पुरुष कम मिलेंगे महिलाएँ ज़्यादा, क्योंकि वही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, हड्डियाँ कमजोर रहीं और समय के साथ साथ वो झुकना चालू कर देती हैं
1: जी।
0: तो जी
1: ये समस्या है। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज एक शिवपुरी के लोगों के लिए, शिवपुरी ज़िले के लोगों के लिए और आसपास के अंचल के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। आप इसके अस्थि रोग के रूप में विभाग अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या मुनासिब कब उसको जाना चाहिए ताकि वो इलाज करा सके, आपसे मिल सके, आपकी टीम से मिल सके और वो स्वस्थ हो सके?
0: जब से मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और अस्थि रोग से संबंधित या उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए कई हमने चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है। रिमेटोलॉजी, जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण जोड़ों के इलाज के लिए एक अलग ही क्लिनिक हम वहाँ चला रहे हैं
1: हॉस्पिटल
0: सरकारी में,
1: मेडिकल कॉलेज,
0: हाँ, जिसको ऑर्थो रिमेटोलॉजी नाम दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि वो रिमेटोलॉजी के 10 से 12 मरीज जो कहीं दूरस्थ इलाकों से बड़े शहरों में इलाज कराने जाते थे वो आज मेरे पास आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे, उनकी जांचें हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं और मरीज हताश होता है, कभी इस डॉक्टर को दिखाएगा, कभी उस शहर में जाएगा। तो पहला हमारा काम होता है उसकी काउंसलिंग करना कि अब आज से आपको कहीं जाना नहीं,
1: मेंटली उसे प्रिपेयर,
0: मेंटली प्रिपेयर करना जिससे वो दवाई ना छोड़े और डॉक्टर से नियमित सलाह ले। चूँकि इस व्यस्तता के शेड्यूल में हम देखते हैं कि प्रतिदिन 200 मरीज आते हैं ऑर्थो में, तो हम ऐसे में उन मरीजों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में मंगलवार का दिन मेरा चूँकि थोड़ा सा फ्री रहता है या कम वर्क रहता है तो मैंने वो अलग से रूमेटोलॉजी क्लिनिक अलग से संचालित की है जिससे लोग यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो आएँ, एनरोल करें।
1: यानी कहने की तात्पर्य यह है कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी जो अस्थि रोग से संबंधित या हड्डियों के जोड़ से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, एक आम इंसान की समस्याएं हैं, उसका इलाज संभव है, जहां पर आप और पूरी टीम के साथ हम व्यक्ति इलाज करा सकता है। खान पान का ध्यान किस तरह का रखे कि उसे जोड़, मतलब कौन सा विटामिन या कौन सी सब्जियों पर उसे फोकस करना चाहिए ताकि कम से कम दर्द हो?
0: जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा तत्व जो शरीर के अंदर जो टूटन है उसको करेक्ट करें, उसको सही करें। तो बच्चों में ये प्रचुर मात्रा में होता है इसलिए उनको चोट भी लगती जल्दी हील हो जाता है। एडल्ट में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं चोट लगी और 2-4 दिन में ठीक हो जाते, बैलेंस कर लेता है, लेकिन फिर 40 के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट जो अच्छा वाला तत्व है वो कम होना चालू होता है और उसके कम होने से खराब वाला बढ़ता है तो वो डैमेज करना चालू। ये अच्छा तत्व हमारी हरी हरी सब्जियों में, सभी फलों में, दूध

0: दूध में और बिना मिलावट वाला भोजन करने से इन सब तत्वों से हम बढ़ा सकते हैं। जिसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे लिगामेंट मजबूत हैं। जितनी मोटी रस्सी होगी जोड़ों के आसपास, उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और उतना जोड़ों की समस्याएं कम रहेगी।
1: लिगामेंट्स रेप्चर नहीं होने चाहिए, खान पान बेहतर होना चाहिए और थोड़ा वक्त अपने शरीर के लिए भी वर्जिश के मोड में दें। यही कहना चाहते हैं ना कि कसरत करें,
0: डेली कसरत, माइल्ड कहें कि थोड़ी कसरत डेली जरूरी है। और कसरत के लिए कहीं जाने घर में ही आसानी से हो सकती है। अगर आप डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक भी करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ा सा तेज चहलकदमी करते हैं, तो वो भी काफ़ी होता है इसके लिए।
1: बातचीत बहुत अच्छी हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता इस हड्डियों के जो जोड़ से संबंधित समस्याएं जो आम इंसान में आती हैं और बचने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज इसके लिए है, वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं, अस्थि रोग विभाग में जा सकते हैं और उसका इलाज होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ बातचीत में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो अब सुन रहे थे भैया अपन बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। तो भैया अभी अपन सुन रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, जहाँ को विषय है तो जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार, जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज शर्मा और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, डॉक्टर साहब ने कही कि अपने जीवन में भैया व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। जब अपनी उम्र बढ़ती है भैया तो जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, जाके लाने अपन को अच्छा भैया भोजन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करें और ऐसा भोजन करें जैसे अपने भैया हड्डियों को अपनी को सही हो सके। और व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए जब भी अपन स्वस्थ रह सकते हैं। और अब आगे अपन और बताएंगे, पहले हम आप लोगों को सुनवाते हैं माधुरी शर्मा को गाओ जो बढ़िया।

तो भैया अभी अपन सुन रहे थे जो बढ़िया सो लोकगीत जाएगा वह तो भैया माधुरी शर्मा ने। उम्मीद है आपको उनको पसंद आओ हो। अब भैया अपन आगे बात करें तो बरसात के समय में भैया अपन दूषित जल से कैसे बचें। तो भैया जा टाइम चल रहा है बरसात को, और भैया जा टाइम बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलत है, तो हमें जा टाइम दूषित जल से कैसे बचना चाहिए। भैया दूषित जल के प्रयोग से हैजा, टाइफाइड, डायरिया और भैया पीलिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाते हैं। तो भैया जा मौसम में बीमारी ज़्यादा भी फैलत है, तो हमें ऐसे में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और दूषित जल के से बचवे के लाने सबसे अच्छा भैया और बेहतर उपाय है कि अपन को पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पानी को उबाल लेवे और फिर भैया वह मिट्टी के घड़ा में छान कर भर देवे, तो ऐसे अपन स्वच्छ पानी कर सकते हैं। और अगर भैया नहीं उबाल पा रहे हैं अपन, तो फिर अपन थोड़ी सी फिटकरी जो है पानी में घुमा देवे। फिटकरी से भी पानी साफ हो जाता है और बाकी गंदगी हट जाते हैं। और भैया जो लोग खरीद सकत हैं बिलो कोनो प्यूरीफायर है वो खरीद लेवे, तो वासे का होएगो कि पानी अपन को स्वच्छ मिल जाएगा। कहवे को मतलब ये है भैया कि सादा पानी अपन को नहीं पीना है, बोर में से निकलो भाव या अपन को जो पानी नहीं पीना है, नल आ रहे हैं वो पानी जा टाइम भैया पानी गंदो भी आते हैं। बरसात के टाइम में हर जगह नदी नाले चढ़े होते हैं, तो जो पानी अपने पाइप में आ रहा है अगर पाइप थोड़ा सा भी वहाँ में फूटो है तो वो गंदो पानी मिक्स हो जाते हैं, तो अपना पानी गंदो हो जाता है। और वह गंदे पानी में भैया कई तरह की बीमारी फैलावे वाले भैया कीटाणु मिले होते हैं। तो अगर अपन पानी को उबाल लेंगे तो वो सारी भैया जो कीटाणु हैं वो सब मर जाएंगे, तो अपन ऐसे पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। और भैया जा टाइम अपन को बाहर खुले पानी से भी बचना चाहिए, खुलो पानी अपन को नहीं पीना चाहिए। अपन जब भी कहीं जा रहे हैं तो भैया पानी उबाल कर रखें और अपन वो अपनी बोतल संग लेके जाएं। ऐसे अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपन इन सब परेशानियों से बचे रहेंगे, और जहाँ बरसात के टाइम में भी अपन स्वस्थ बने रहेंगे। बरसात के टाइम पे अपन को अपनी सेहत को विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे कि बीमारी बहुत फैलत है। और अब भैया अपने चलवे को टाइम भी हो रहा है, तो चलत चलत हम आप लोगों को देते हैं अपने मौसम की जानकारी। तो अपने शिवप्रीम को अधिकतम

तापमान रहो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मतलब कि नमी रही 58% और हवा की गति रही 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये तो होती भैया आज के मौसम की जानकारी। और अब अपनी साधना बहन को इजाजत। राम राम, जय जवान।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
1: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 देशों में गए जहाँ भारत का 3 देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6 से 8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो 3 देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं।
2: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था 3 देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है, बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो ब्राह्मोस मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का 3रा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्राह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के, सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पाद में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो IT टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है, उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के, कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है। प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और KPU जनरल इलेक्शन कमीशन जो इंडोनेशिया का है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFC IOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासेरी में। और प्रम्बानान मंदिर, जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की, उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर

0: जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 MOUs और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये एक हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
0: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए। और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो D's इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे हैं उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है एक्ट ईस्ट की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का, तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब यह है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास के साथ साथ भारत का भी विकास हो और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो। तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ MOUs इन तीनों यात्राओं में आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया

0: तबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है, जिसमें जापान और अमेरिका भी हैं। आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत पे, उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पड़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है। और इस वजह से ये ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं, और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं, और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता है, और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता है। न्यूजीलैंड जिसने बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे, और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा है, और भारत की जो नीति है चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है, आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अंक में हम जानेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो हमारे छोटे और सीमांत किसान भाइयों से संबंधित है। जी हां साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूर्ण होने पर छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना पर विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर, श्री भवानी शंकर गुप्ता।
1: भारत सरकार द्वारा निरंतर किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, और इसमें जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो किसानों की वृद्धावस्था के लिए चिंता करने वाली योजना है
0: जी,
1: और इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था, और उसी दिन से हमारे किसान भाइयों के उसमें पंजीयन प्रारंभ हो गए थे। और ये किसानों के लिए, चूंकि किसान 60 साल की उम्र में जब आ जाता है तो उस समय उसके शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण वो खेती किसानी का कार्य नहीं कर पाता है, तो वृद्धावस्था में उसको आर्थिक सहारे के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी।
0: जी, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपने इस योजना के प्रारंभ होने के बारे में बता दिया है। गुप्ता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना से जुड़ने के लिए किस आयु वर्ग के किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों को अगर इस योजना में जुड़ना है तो इसके लिए जो उनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए
0: जी,
1: और 18 वर्ष का कोई कृषक है वो भी जुड़ सकता है, और अधिकतम उम्र 40 रखी गई, 40 वर्ष का किसान इसमें जुड़ सकता है। और उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जैसे 18 वर्ष का किसान है तो उसको 55 रुपए प्रीमियम देना और पड़ेगा प्रति माह, और यदि वो 25 वर्ष का है तो उसको 100 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा प्रति माह, यदि वो 30 साल का है तो लगभग उसको 155 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 40 वर्ष का है तो 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण के लिए बताया है, वो जिस उम्र का है उसी से उसके प्रीमियम की गणना हो जाएगी और वो देगा। और कुल मिलाकर के इसमें ये है कि 100 रुपए अगर किसान दे रहा है तो 100 रुपए उसमें सरकार मिलाती है। ये जो योजना है, ये योजना इसलिए प्रारंभ की गई है कि एक तो ये बुढ़ापे में पेंशन किसानों को मिलने लगेगी, क्योंकि जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से हमारे किसानों को भी एक पेंशन मिलने के लिए ये योजना है। दूसरा, स्वैच्छिक एवं अंशदायी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर किसान को जुड़ना ही है कि उसको इसके

0: में भाग लेना है, उसकी इच्छा है तो उसमें वो अपना अंश दे सकता है। 100 रुपए अगर वो दे रहा है तो 100 रुपए सरकार उसमें मिलाएगी।
1: जी
0: और दूसरी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वो उनके लिए मतलब अच्छी है कि बुढ़ापे में उनके लिए, क्योंकि बीमारियां भी हो जाती हैं, उसकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाती है किसान भाइयों की, तो एक छोटा सा सहारा उनके लिए इस योजना से हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि किसान भाइयों को अच्छे जल्दी से इसमें मतलब जुड़ना चाहिए, और प्रीमियम भी नाम मात्र का है उसमें, कोई ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं है।
1: गुप्ता जी, ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो कृषक वर्ग है वो बहुत विशाल है, इसकी जो पात्रता क्या है, क्या सारे कृषक वर्ग इससे जुड़ सकते हैं या किस वर्ग के किसान बंधु इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: हाँ, इसके लिए मतलब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि उसके पास में 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन होना चाहिए,
1: जी
0: और उसके ऊपर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर जमीन, मतलब 5 एकड़ जमीन उसके पास है तो वो अपना इसमें पंजीयन करा सकता है,
1: जी
0: और उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से अगर वो है तो वो उसका लाभ ले सकता है इसमें।
1: बिल्कुल, आपने इसकी पात्रता के बारे में बता दिया है और आयु के बारे में भी बता दिया है। गुप्ता जी, अगर हमारे किसान बंधु कुछ कृषक भाई इस पात्रता में आते हैं, कहाँ से वो पंजीयन करा सकते हैं, किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, इस योजना को पंजीयन कराने के लिए एक तो अपने कॉमन सर्विस सेंटर है,
1: जी
0: वहां पर जाके किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं और उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा, इसमें 2 बैंक भी है, हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक है, वहां भी जाकर के हमारे किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को जो किसान पीएम किसान के अंदर जो धनराशि मिल रही है, जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत, तो उनको वहां जाकर के बस बताना है, तो उसमें से उनका प्रीमियम को माला आवेदन दे देंगे, तो उनको जो आता है ना पीएम किसान योजना के अंदर जो राशि आती है
1: जी
0: 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की, तो
1: सम्मान
0: उसमें
1: निधि,
0: सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना,
1: जी
0: तो वो वहां भी अपना आवेदन अगर बैंक में देते हैं उसमें से कर सकते हैं।
1: जी
0: इसी योजना को LIC द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इस जो संचालन इसमें ऐसा है कि यदि किसी कारण से कोई किसान भाई के साथ में ऐसा ना हो और 60 वर्ष का होने के पहले ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान द्वारा जमा किया गई राशि है, सरकार द्वारा मिलाई गई राशि है, और उस पर जो बना हुआ ब्याज है, उस सब का भुगतान उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
1: जी
0: मतलब ये इसकी और खासियत है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम चला गया तो अब पता नहीं क्या होगा, तो मतलब अगर 60 साल के पहले खुदा न खास्ता किसी किसान भाई के साथ में अनहोनी हो जाती है, तो वो किसान भाई को उसका जो जमा किया गया पैसा, मतलब सरकार द्वारा मिला गया पैसा, इसके बाद उसपे जो बैंक के द्वारा जो भी ब्याज बना है उस पैसे को मिला करके उसके नॉमिनी को लौटा दिया जाता
1: जी
0: है। और दूसरी एक और खासियत इसकी है कि जैसे किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी इसमें पेंशन का प्रोविजन है।
1: जी जी
0: मतलब अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो जैसे 3,000 रुपये महीने किसान को मिलना है पेंशन, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो
1: जी
0: ये योजना बहुत अच्छी है। तो अशोकनगर जिले में 2019-20 से लेके और अभी 2026-27 तक 955 किसानों ने इसमें मतलब अपना पंजीयन कराया है।
1: जी
0: तो मतलब मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी योजना है, 18 से 40 वर्ष के किसान इसमें भाग ले सकते हैं, छोटे से प्रीमियम की राशि है, सरकार द्वारा उस प्रीमियम में कुछ प्रतिपूर्ति भी की जा रही है, मतलब कुछ अपना मिलाया जा रहा है, तो ये करने की जरूरत है। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा,
1: हाँ जी
0: मतलब नॉमिनी जरूर करना चाहिए उसमें, मतलब जब आवेदन कर रहे हैं उस समय जो भी पत्नी या पुत्र वगैरह उसका नॉमिनेशन, नहीं तो क्या होता है कि कभी जैसे 60 साल की उम्र के बाद में किसान की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसको दी जानी है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा,
1: जी
0: 60 साल के पहले यदि किसी अनहोनी के कारण कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी जो प्रीमियम की राशि है, जो जमा की गई राशि प्लस सरकार द्वारा जमा की गई राशि प्लस ब्याज की राशि, किसको लौटाई जाए, तो इसलिए नॉमिनेशन करना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही अच्छी सुविधाजनक योजना है और आपने काफी सारी इसके लाभ बेनिफिट्स बता भी दिए हैं। अब एक प्रश्न ये मन में उठ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाइयों के पास कौन-कौन से कागजात जरूरी होना चाहिए?
0: ये अपन ने बहुत सारी चर्चा तो कर
1: जी
0: ली, लेकिन क्या है कि किसान भाई कहेंगे करना क्या है।
1: जी
0: तो देखिए क्या बोलते हैं, इसके लिए एक तो किसान का खसरा खतौनी की नकल होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और जो भी उसका जनधन खाता है या किसान का जो भी बैंक का खाता है वो खाता नंबर है, तो ये चीजें उसके लिए मतलब आवश्यक हैं। इन चीजों को लेकर के और वो आवेदन करता है तो उसका कचरा खतौनी की नकल हो गई, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया उसकी बैंक पासबुक, जो भी उसका जनधन खाता है या सामान्य खाता है, बचत खाता है, तो और इसके अलावा मोबाइल नंबर, ये बस इतनी चीजों की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल शब्दों में आपने किसान भाइयों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, और प्रीमियम्स पर बहुत विस्तार से आपने बातचीत की है कि किस एज में आप जुड़ेंगे तो क्या प्रीमियम रहेगा।
0: एक चीज और किसान भाइयों को मैं सलाह बताऊंगा, मतलब देना चाहूंगा कि जो प्रीमियम है उसको बीच में स्टॉप न करें, नहीं तो क्या होता है कि वो प्रीमियम जमा कर देंगे तो जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो 1 साल तक उसको चलाते हैं, उसके बाद में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो उस पे जो भी मतलब पेनल्टीज है तो उसको जमा कर दोगे तो पुनः चालू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इसको प्रारंभ करें तो इसको वो ना करें, और अगर वो उसके माध्यम से चलते हैं आपका क्या बोलते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो जो किसान सम्मान निधि है तो उसमें से तो अपने आप ही क्या बोलते हैं स्वतः उसमें से राशि कट जाया करेगी, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज की सुविधा और दी है इसमें सरकार ने, मतलब किसान को अपना वो देखना है स्टेटस, तो स्टेटस देखने के लिए मानधन.in
1: जी
0: करके वो उस पे अपना वो भी देख सकता है कि मेरी कितनी राशि जमा हो गई, क्या हो गया, तो अपनी उसकी पॉलिसी का स्टेटस भी देख सकता है।
1: जी
0: तो मतलब ये भी उन्होंने शासन ने इसमें भारत सरकार ने किया है, तो किसान भाई इसको मतलब अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं आज के इस अंक में बस इतना ही। डगर विकास की कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: आलेख और वाचन श्रोता हरिशंकर से भरे का प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गुना केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है चलती।

सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार।

खेचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खेचा मैंने खेचा आ हा हा

0: गया।
1: जी बर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है आशा।

सी रामचंद्र का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल आशा भोसले की आवाज में गीत सुना फिल्म आशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है पड़ोसन। साथ दे रहे हैं मन्ना डे और महमूद।

आर.डी. बर्मन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल महमूद मन्नाडे और किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना आपने पड़ोसन फिल्म से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
3: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम

और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
1: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना

मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि अदनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज़ में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरतेहाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अदनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदाराने इनकलाब IRGC की तरफ से अदनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि अदनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त अदनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान अदनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जस्दे खाकी आज हो ची मिन सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जस्दे खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जस्ते खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाह को भारत लाया जा रहा है जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का अहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी 3 दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्मान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जनभवन के अहाते में संदर्भ

0: का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जन भवन के अफसरान और मुलाजिमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधा कृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आजादी मन्नथु पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथु पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800-11-7800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वज़ीर आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरे के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफ्द की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी इख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मुतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानिब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयानात 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और

0: की पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के ज़राअत, पाशी और मवेशियों के उमूर के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात में ज़राअत, आबपाशी, ज़रई तहकीक, सलाहियत साजी, ज़रई तजारत में तआवुन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इनकार किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन की टंकी में खराबियां आ सकती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मेयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथेनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मारूफ गुलूकारा इस जानकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया है। चीन के ऑर्डोस में एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने 16 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की। इसमें सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। विंबलडन टेनिस में मर्दों के फाइनल मुकाबले में लंदन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मुकाबला जारी है। सिनर ने नोवाक जोकोविच से सीधे सेटों में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई है, जबकि ज़वरोव ने ब्रिटानिया के आर्थर फेरी को शिकस्त देकर पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी जानिब 10वें दर्जे की जोड़ी चीन की गुओ हानिउ और फ्रांस की क्रिस्टीना मोलोडोवेच ने खवातीन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरे दर्जे की जोड़ी कनाडा की गैब्रिएला ब्रांस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। इंग्लैंड में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी खवातीन क्रिकेट के एक तारीखी टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने 7 विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग डिक्लेयर की और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का निशाना रखा। कल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए थे। फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाज़ों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाज़ों की आज़ादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्द खाकी को होचीमिन सिटी लाया गया है। अब इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। दिस इज आकाशवाणी। In our national program of features, we now bring you a feature titled G Accommodations.

0: A home away from home.
1: Every year, millions of Indians migrate across states carrying suitcases packed with dreams. Their first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary, paying guest.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं रक्षा तंवर आपके साथ। यहाँ पर हम आपके भेजे गए पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म जिद्दी से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इसके अलावा बनियादपारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनका पूरा परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने लिखा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

एसडी बर्मन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म जिद्दी से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है पाकीज़ा और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जिन श्रोता से। उन्होंने हमें लिखा है शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से, अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव की ओर से, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव की तरफ से भी हमें पत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और दतरेंगी से भागवत वर्मा लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कमाल अमरोही के लिखे बोल। लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म पाकीजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दुलारी और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना की ओर से। इसके अलावा एक पत्र हमें मिला है दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली की ओर से। फजलका पंजाब से हमें लिखा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, देवानसी खेड़ा, शालनी खेड़ा और अरबी खेड़ा, साथ ही लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और उनके पूरे परिवार ने, साथ ही वानी खेड़ा ने भी। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

फिल्म दुलारी से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने। संगीत था नौशाद का, बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ है मोहम्मद रफ़ी, फिल्म का नाम है इज्जत। और आपकी फरमाइश में इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावीद खान, सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। इसके अलावा स्कीन नंबर 71, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा, गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कपचाले, नेहा फरसी, सीमा सबिहा, फलक, पूजा, सुषमा और समीर की तरफ से भी इस गीत की फरमाइश हुई है। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है यह अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, साहिर लुधियानवी के लिखे बोल, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म इज्जत से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का, और अगली फरमाइश हमें मिली है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की तरफ से। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है हेमलता की आवाज में, फिल्म अखियों के झरोखे से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है कवर कॉलोनी बड़वाहा प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की तरफ से भी। जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। इसके अलावा मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइस बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, स्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी और प्रणेता गवाड़कर की ओर से भी। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं के लिखे बोल, हेमलता की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म अकियो के झरोखों से। और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपनी फरमाइशें हमें जरूर भेजते रहें अपने पत्रों के द्वारा। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। अपने पत्र और अपनी फरमाइशें इसी तरह भेजते रहें। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gayaki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ा दास साहित्य, कन्नड़ा वचन साहित्य एंड मेनी अदर ट्रेडिशंस। एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, कुमार हैज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द कंट्री इन वेरियस प्रेस्टिजियस कॉन्सर्ट्स।
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मरडूर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छाया नट, विलंबित झूमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मडूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मडूर will now present राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मर्डूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने

वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन्ह हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया।

नमस्कार, सुप्रभात। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर समेट ली है और पूरब के आकाश पर सूरज की हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी है। हवा में एक नर्म सी ठंडक है। पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई सुबह का संदेश बांट रही हैं। ऐसे ही मौसम में आपके साथ मैं जुड़ी हूं, आपकी अपनी अर्चना गोयल, और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम भूर सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद खूबसूरत पॉजिटिव गीत के साथ।

दोस्तों, सुबह और संगीत का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। एक अच्छा गीत जब सुबह सुबह कानों में पड़ता है तो लगता है जैसे मन की खिड़कियां खुल गई हों और ताजी हवा सीधे दिल तक पहुंच रही हो। वैसे सुबह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल चाहे दिन कैसा भी रहा हो, सूरज ये कभी नहीं कहता कि कल बादल थे इसलिए आज मैं नहीं निकलूंगा। वो हर दिन आता है अपने पूरे उजाले के साथ।

शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है बीता हुआ कल हमारे आज के उजाले को कम नहीं कर सकता। साथियों, अगर कल कोई बात मन के मुताबिक नहीं हुई, कोई काम अधूरा रह गया या किसी की बात ने मन को उदास कर दिया, तो उसे आज की सुबह पर हावी मत होने दीजिए। आज नया दिन, नई शुरुआत है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आपने कभी सूरज को बहुत करीब से महसूस किया है? बस कुछ पल खिड़की के पास खड़े होकर, कहीं चाय की केतली से उड़ती भाप, कहीं मंदिर की घंटियां, कहीं दूर साइकिल की घंटी और कहीं कोई माँ अपने बच्चे को जगा रही होती है। यही तो हमारे जीवन की असली तस्वीर है।